जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। माँ दुर्गा के नौ रूप हमें जीवन के नौ महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। माँ शैलपुत्री हमें दृढ़ता सिखाती हैं और माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम का संदेश देती हैं। माँ चंद्रघंटा साहस की प्रेरणा देती हैं। माँ कुष्मांडा सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। माँ स्कंद माता ममता का संदेश देती हैं और माँ कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। माँ कालरात्रि भय से लड़ना सिखाती हैं। माँ महागौरी पवित्रता और शांति का भाव जगाती हैं, जबकि माँ सिद्धिदात्री ज्ञान साधना और सिद्धि का प्रतीक है। जरा सोचिए, अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश कितना बेहतर बन सकता है। तो दोस्तों, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की मां जगदम्बा की आराधना के साथ।

आज पहला नवरात्रा है, आप सभी का स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, जय माता की। दोस्तों, आज से हम सभी ने अपने घरों में माता रानी का दरबार सजाया होगा। हर परिवार माँ से यही विनती करता है, यही आराधना करता है कि उनके जीवन में खुशियां आए और ये 9 दिन उनके जीवन को नई ऊर्जा, नई शक्तियों से, नए उत्साह से भरकर चले जाएं। अगर आपने भी तैयारी कर ली है नवरात्रे पूजन की तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माँ की आराधना करते हैं और इन खास नवरात्रों की चर्चा करेंगे इस भक्ति संगीत के बाद।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भजन महामाई जगदम्बा के। हम देवी माँ को किसी भी रूप में पूज सकते हैं। माँ का हर रूप आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए काफी है। महामाई के 9 दिनों में 9 रूप होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पर उसके अलावा भी 10 महाविद्याएं भी होती हैं। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाले कार्यक्रम में। लेकिन आज क्योंकि पहला नवरात्रा है, आज का दिन बहुत ही खास होता है। हम अपने घरों में माँ का दरबार सजाते हैं, अपने अपने तरीके से, अपनी परंपराओं के तरीके से माँ की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन याद रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमको सब कुछ नहीं पता होता, यानी कि किस तरह से पूजा होनी चाहिए ये हमको नहीं पता होता कई बार। इसीलिए हमें थोड़ा एहतियात भी बरतना चाहिए। हमें अपने जो ग्रंथ हैं, जो माँ जगदम्बा की, मान लीजिए दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करना चाहते हैं या माँ की कोई स्पेशल पूजा आप करना चाहते हैं, तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, तो उनको भी फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में दुर्गा माँ की पूजा आराधना हर परिवार कर सकता है। अपने पारिवारिक परंपराओं के अनुसार माँ का दरबार घर में सजाइए, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने घर को पवित्र बनाइए और उनको घर में विराजित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए, बैठा दीजिए और माँ इन 9 दिनों में आपके ऊपर कृपा बरसाए, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं। बातें चलती रहेंगी। फिलहाल समय है इस सुंदर से भजन का।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए।

0: अब कैंसर से डरिए नहीं। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा। जय माता की। नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, नवरात्रि हमें महिलाओं के

मान और सुरक्षा का संदेश भी देती है। माँ दुर्गा की पूजा तभी सार्थक होगी जब हम अपने घर की बेटियों को सम्मान देंगे, उनकी शिक्षा उसको प्रोत्साहित करेंगे और समाज की हर महिला के अधिकारों की रक्षा करेंगे। कोई भी बेटी हो, कोई भी महिला हो, उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है, हमें ऐसा मानना चाहिए। आइए इस नवरात्रि हम ये संकल्प लें कि बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, सभी बुजुर्गों का भी सम्मान करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और अपने आसपास प्रेम, स्वच्छता, सद्भाव का वातावरण बनाएंगे, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी को चारों तरफ फैलाएंगे, तभी सच्चे मायनों में हम नवरात्रि पूजन कर पाएंगे।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह भारतीय आजादी हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। हम सभी अपनी अपनी तरह से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, हम लोग व्रत करते हैं, परहेज का जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं। तो आज मैं कपिल अपने युवा साथियों से, जैन जी से भी करना चाहता हूँ। आजकल सब जैन जी से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमें अपने धर्म के लिए, जो हमारी पवित्रता है उसको बरकरार रखने के लिए, अपनी युवा पीढ़ी को भी जागरूक करना होगा और ये समझाना होगा कि ये जो तौर तरीके या पूजा की पद्धतियां हैं, इनका रीजन क्या है और ये क्यों है। याद रखिए, आपके अंदर भी एक शक्ति है दोस्तों। अपने सपनों पर विश्वास रखिएगा, अपने माता पिता का सम्मान कीजिएगा, शिक्षा को अपना हथियार बनाइएगा और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत करते रहिएगा। यही 9 दिनों का सबसे बड़ा सूत्र है जो किसी के भी जीवन को रूपांतरित करने के लिए काफी है। गुड मॉर्निंग, जय माता की।

आज पहला नवरात्रा है। गुड मॉर्निंग, जय माता की। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस बार नवरात्रों के इन पावन दिनों में आप क्या खास करने वाले हैं बता सकते हैं 9639012111 पर। अपनी पसंद के भजन भी सुन सकते हैं। माता रानी का कौन सा भजन आपको पसंद सबसे ज्यादा है मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं चलाऊंगा। देखिए, आज के दिन घरों में दरबार सजाया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ परिवारों में कि जब कोई तीज या त्योहार का टाइम होता है, पूजन का टाइम होता है, तो ग्रह कलेश भी हो जाता है, जल्दबाजी होती है, सब एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ बातें भी डाल देते हैं कि देर हो गई है, काम छूट गया है या कुछ करना है, तो इस चक्कर में आपसी मनमुटाव भी हो जाते हैं। और जब बात नवरात्रों की हो तो पवित्र दिन होते हैं। न सिर्फ शरीर घर स्थान पवित्र होना है, मन और दिमाग हमारा दोनों ही पवित्र होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मन पवित्र नहीं हुआ, कोमल नहीं हुआ, तो माता रानी की ये ऊर्जा, ये शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी जीवन में। क्योंकि घर में प्रवेश करने से पहले महामाई जगदम्बा, अंबे अंबा अंबालिका मां, त्रिपुर भैरवी सुंदरी मां पीताम्बरा आपके जीवन में प्रवेश करती हैं आपके मन से, आपके मन से। तो मन में सबसे पहले पवित्रता धारण कीजिए। दूसरों की अगर कोई गलती है भी तो उन्हें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक वैसे ही करना सीखिए जैसे हम खुद महामाई से क्षमा प्रार्थना करते हैं। गुड मॉर्निंग, जय माता की।

आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वास्तु कृष्णा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर है 9639012111। नवरात्रि विशेष चल रहा है। देखिए, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो ये वो महत्वपूर्ण समय है जब इसमें हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, यानी 9 अलग अलग रूप। हर दिन एक नए रूप की पूजा करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा के किसी भी रूप की आप पूजा करें, हर रूप कुछ ना कुछ आपको देकर जाता है। जैसे कि 9 दुर्गों में 9 रूप तो आप सब जानते ही हैं।

और अहंकार पर विजय आप पा सकते हैं माँ की आराधना करके। माँ तारा संकट से पार लगाने वाली देवी माँ तारा होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य संतुलन और परम चेतना की महादेवी हैं, ये महाशक्ति हैं ये। माँ भुवनेश्वरी समस्त भुवनों की अधिष्ठात्री देवी हैं ये। माँ भैरवी तप शक्ति और दृढ़ संकल्प, जिसे बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपको चाहिए माँ भैरवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ छिन्नमस्ता त्याग और आत्मबल की देवी हैं ये। माँ का जो रूप भी आप देखेंगे वो किसी न किसी तरीके से आपको जीवन में बहुत कुछ देकर जाता है। दस महाविद्याओं में जो सातवां रूप है महामाई का वो है माँ धूमावती का, वैराग्य देती हैं, जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको शक्ति प्रदान करती हैं और जीवन की सच्चाई आपको दिखाती हैं। और आठवां जो महारूप है महामाई का वो है माँ बगलामुखी का, वाणी संयम और शत्रुता पर नियंत्रण करने की महामाई है। और नौवां जो रूप है दस महाविद्याओं में महामाई का वो है माँ मातंगी का, कला वाणी और ज्ञान की देवी हैं ये। और दस महाविद्याओं में जो दसवीं महाविद्या माँ शक्ति हैं माँ कमला, समृद्धि सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी है माँ कमला। इन्हीं रूपों के बारे में और चर्चा करेंगे। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, जय माता की। और अब समय है इस प्यारे सुंदर से भजन का। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं।

नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। महामाई जगदम्बा के अनंत रूप हैं। जिस भी रूप में आप उन्हें पूजेंगे वो आपकी हर बात सुनेंगी। माँ स्कंद माता का रूप हो, माँ कात्यायनी हो, माँ कुष्मांडा हो, माँ चंद्रघंटा हो या माँ ब्रह्मचारिणी, हर रूप स्वरूप उनका आपके ही लिए है। दरअसल जब हम पूजा करते हैं तो हम किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते, इससे किसी और का लाभ नहीं होता। जब भी हम कभी कोई पूजा आराधना करते हैं तो ये केवल हमारे लिए होती है। जो धूप दीप जलाते हैं उससे हमारे जीवन में रूपांतरण की शक्ति पैदा होती है। माँ जगदम्बा आपके जीवन में आपको कामयाबी का आशीर्वाद दें, आपके ऊपर कृपा बरसाएं, आपके परिवार में खुशियां और संपन्नता हमेशा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो।

पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नार्चिता शिवा अर्ध चंद्र धरी देवी गदा मुदगर धारिणी सावित्री त्रिप्रदा शुद्धा सगोराग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोह ब्रह्म रूपा हरि प्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति चिन्मयी भक्त वत्सला

दंडदर्पहरी देवी शुंभासुर निवर्हिणी राजराजेश्वरी देवी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटव हंत्री च रक्त बीज विनाशिनी धूम्राक्ष दैत्र हंत्री च भंडासुर विनाशिनी रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमरांबिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्रभुजा च गृहमाता गुणेश्वरी वज्रपाचधरा देवी जीवामुदगरधारिणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी अष्टोत्तर शतनामना बगलाया तुय

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया।

0: परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी, मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर पड़े हुए पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है। और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई। और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर मतलब आप समझे, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है। मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार है पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए यह संक्रमण एक दूसरे से ना फैले, इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासीटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को यह फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासीटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाई आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया में सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, दौरे, बहुत ज्यादा कमजोरी, पेशाब का कम होना जैसे गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार अपने आप में बीमारी का नाम नहीं है दोस्तों, बुखार शरीर का एक संकेत है, असली कारण पता लगाना जरूरी है। यानी जो बुखार हमको होता है ना, वो कोई बीमारी नहीं, बुखार जिस वजह से हो रहा है उसका पता लगेगा जाके डॉक्टर के पास। इसीलिए इस मौसम में तीनों बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मच्छर नहीं होने देना है पैदा। दूसरा, बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, खुद से दवाई लेने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और जांच तुरंत कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संचारी रोगों से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती, ये लड़ाई हमारे घर से, हमारी गली से और हमारी जागरूकता से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई, सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रायोजक है, प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट NGO, जिनके साथ मिलकर हम लंबे समय से आपको जागरूक कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सेहत सही लाभ कई। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने आपको कई बीमारियों के प्रति जागरूक किया है। पिछले कई कार्यक्रम में हमने आपको TB नामक रोग के बारे में भी बताया है। TB एक जानलेवा बीमारी होती है, लेकिन अब इसका पूरी तरह से इलाज संभव है, ये भी हमने आपको बताया। दोस्तों, पिछले कई कार्यक्रम में हमने TB के बारे में विस्तार से बात की है। हमने जाना था कि TB का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवाई की जो प्रतिरोधी यानी कि MDR TB का भी इलाज अब पूरी तरह से उपलब्ध है। लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो TB के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर बाहर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इलाज को बीच में कभी भी रोकना नहीं चाहिए। दवाओं के संभावित रिएक्शन की अगर दवा से कोई परेशानी हो रही है तो निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद के लिए तुरंत तैयार रहती है।

प्रस्तुति। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे ही टीबी की दवा शुरू होती है, कुछ ही महीने में, लगभग एक से डेढ़ महीने में मरीज को खांसी पूरी तरह से बंद हो जाती है, बलगम आने में भी कमी हो जाती है, बुखार आना भी बंद हो जाता है। ऐसे में मरीज को लगता है कि अब वो ठीक हो गया है, तो एक से दो महीने के अंतराल पर ही कई बार मरीज दवाइयां बंद कर देते हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी के सलाह या मशवरा के खुद से ही दवाई बंद करके बैठ जाते हैं। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी एक ऐसी गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, बिना एक्सपर्ट की सलाह के तो दवा बंद ही नहीं करनी चाहिए। और रही बात टीबी की जांच की और टीबी की दवाइयों की, तो पूरा कोर्स ही करना चाहिए जो तकरीबन 9 महीने तक लगातार चलता है। जो टीबी से संबंधित अधिकारी, डॉक्टर या निक्ष से संबंधित डॉक्टर्स या टीम होती है, उनके संपर्क में आपको लगातार बने रहना चाहिए। उनके जानकारी के बिना कभी भी दवा रोकना नहीं चाहिए।

0: यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। टीबी एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है, लेकिन इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, दवा लंबे समय तक यानी कि पूरा कोर्स करना जरूरी है। बहुत से लोग अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं, जैसे ही महीने दो महीने में उनको आराम लगना शुरू हो जाता है। तो पिछले कई कार्यक्रमों के बाद, जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आता है, संदेश भी आता है। अधिकांश लोगों से एक ही बात हुई और हमें पता चला कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक, महीनों तक दवा खाना, लगातार खाते रहना आसान नहीं होता। और दोस्तों सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा इलाज करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आज की जो हमारी ये चर्चा है, इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको टीबी का इलाज शुरू करा देना चाहिए। जिन लोगों ने टीबी का इलाज शुरू करवा दिया और किसी भी वजह से उसको बीच में रोक दिया, तो अपनी जान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली। एक तो आपको टीबी हो गई है और टीबी का इलाज अगर आपने शुरू करा दिया दवा बीच में रोकने के बाद, टीबी और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है, बाद में मरीजों को ज्यादा समस्या हो सकती है। तो सभी श्रोताओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी अगर आपने कोई मरीज ऐसा देखा जिसको टीबी हुई और उसने दवाई बीच में रोक दी, चाहे किसी भी परेशानी से, मान लीजिए उसको दवा लेने में समस्या हो रही है, कोई रिएक्शन उसको नजर आ रहा है, या उसको आराम लग गया है, या वो काम पर किसी दूसरी जगह, दूसरे शहर में लौट गया है और वापस दवा लेने अपने गांव में या कस्बे में नहीं आ सकता, ऐसे मामलों में भी लोग दवाइयां बंद कर देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो तो सचेत होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी घटना के बारे में जो अब से कुछ साल पहले हुई। पास के ही एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था, रवि। उसको लगता था कि उसको फीवर रहता है, बुखार रहता है, वजन कम हो रहा था, खांसी लंबे टाइम से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला कि उसको टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको समझाया कि चिंता की बात नहीं है। इलाज शुरू हो गया। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख वापस लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन डेढ़ महीने के बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हो गई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते या दाने जैसे दिखने लगे, उसे मतली शुरू होने लगी, कभी कभी उल्टी भी शुरू होती। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी कि दवा बंद कर दो, दवा से रिएक्शन हो गया है, दवा नुकसान दे रही है। लेकिन संयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारा ये कार्यक्रम सुना, सेहत सही लाभ कही, और एक पुराना एपिसोड था जिसमें हम बता रहे थे कि दवाइयां नहीं रोकनी चाहिए, जिसमें ये कहा गया, समझाया गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी डॉक्टर को जाकर बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। आपको पता ही है दोस्तों, हमारे आसपास के क्षेत्रों में सब लोग अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। कोई बीमारी हुई, बुखार हुआ, सरदर्द हुआ या कुछ भी समस्या हुई, खुद से ही जाकर मेडिकल स्टोर से कोई दवा मांग लेते हैं। तो हमारे यहां पर यह चलन बहुत बड़ा है कि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए, कुछ अतिरिक्त उपचार भी दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रित हो गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता ने डर कर दवा बंद कर दी होती तो बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा में नहीं है, बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको कभी भी टीबी की दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी। अगर कोई समस्या नजर आ रही है तो जाकर उन डॉक्टरों से, सरकारी टीम के पास आपको पहुंचना चाहिए, निक्षय टीम जो होती है, और बताइए अपनी परेशानी। यकीन मानिए आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। अब एक मरीज को क्या चाहिए? समय पर दवा, अच्छा खानपान, देखभाल, समझाने वाले कुछ लोग और बीमारी से छुटकारा। और ये सब करने में सरकार एक टीबी के मरीज की पूरी तरह से मदद कर रही है। खाते में पैसे भी आते हैं, निक्षय पोर्टली के माध्यम से खाने पीने का सामान भी आता है। सरकार आपको पैसा भी दे रही है, खाने का सामान भी मुहैया करवा रही है, पर जांच भी करवा रही है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि टीबी को पूरी तरह से हराना है दोस्तों।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। टीबी के बारे में हम यहाँ पर बहुत देर से बात कर रहे हैं। टीबी का इलाज कितना ज्यादा जरूरी है, कितना आसान है, सुगम है। सरकार दवाई देती है, खाने पीने का सामान भी देती है, साथ ही साथ आपको उतने पैसे भी देती है कि आप कुछ प्रोटीन युक्त भोजन कर सकते हैं, है ना। निक्षय पोर्टली के माध्यम से आपको खाने पीने का सामान समय समय पर मुहैया भी कराया जाता है। मेरठ जिले में किस प्रकार से सरकार इस योजना को सुनियोजित तरीके से आपके लिए मुहैया करा रही है, आपकी मदद कर रही है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं टीबी रोग विभाग के साथ। आइए बात करते हैं।
1: सेहत सही

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा देती है?
1: नहीं, बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: सर मैंने सुना कि 6 महीने तक या 9 महीने तक दो तरह से चलता, कैसे इलाज चलता है इसका?
1: वो पहले सिस्टम था जिसमें जो कोई नया रोगी आता था उसका इलाज 6 महीने चलता था। कुछ प्रतिशत लोगों में ये बीमारी जो है ना कुछ समय बाद उभर जाती है
0: जी।
1: तो उसको हम बोलते हैं कि रीट्रीटमेंट, यानी कि एक बार ट्रीटमेंट लेने वाला व्यक्ति अगर दोबारा ट्रीटमेंट पे आता है उसको रीट्रीटमेंट बोलते हैं
0: जी।
1: तब पहले नियम था कि उस रोगी को 9 महीने दवा खिलाई जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं है, दवाइयां बहुत इम्प्रूव्ड हो गई हैं। अब किसी ने व्यक्ति ने पहली बार दवा खाई या दूसरी बार दवा खाई, इलाज 6 महीने ही चलता है, अब 9 महीने का सिस्टम

0: बार किसी व्यक्ति का टीबी का इलाज सरकारी आप लोगों की देखरेख में इलाज हो गया तो क्या फिर भविष्य में उसको दोबारा टीबी हो सकती है या नहीं?
1: संभावना है। उसको कोई लापरवाही रखेगा, अगर अपने खान पीन में ध्यान नहीं रखेगा, अपनी इम्यूनिटी को ठीक नहीं रखेगा, तो चूंकि उस बीमारी ने उसका घर देख लिया, आप ऐसे समझिए, मैं देशी भाषा में समझाता हूँ, उसके फेफड़ों पे कुछ इम्पैक्ट डाला, उसके थोड़े बहुत फेफड़े भी इस वजह से कमजोर हुए, तो 2-4% व्यक्तियों में ये संभावना है कि वो बीमारी उनको दोबारा से अपने चपेट में ले।
0: अब सर ये बताएं कि अगर किसी घर में कोई टीबी का मरीज ना चाहते हुए भी हो जाता है तो उनको परहेज किन किन चीजों के रखने, खाने पीने का भी बताएं, और जैसा कि आपने बताया कि बर्तन अलग करा देते हैं, कपड़े वगैरह अलग होते हैं, छोटे बच्चों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, बताएं।
1: देखिए, अगर किसी भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति फेफड़ों के टीबी का रोगी पाया जाता है तो सबसे ज्यादा ध्यान उसको रखना है कि हमेशा मास्क लगा के, कपड़ा लगा के रखे, जब भी खांसे छींके थूके, ये बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों से लिपटा चिपटी या प्यार करने की उन चीजों से बचे वो। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, साथ रहने का कोई परहेज नहीं है। ध्यान रखे उसका कमरा हवादार हो, उसमें कोई रोशनदान हो, कोई एग्जॉस्ट फैन लगा हो, ताजी हवा का इस्तेमाल करे और जितना डिस्टेंस बना सके। वैसे तो जो औषधियां ये खाता है व्यक्ति, लगभग लगभग एक महीने के अंदर वो दवाएं उस रोग को जाके अंदर इतना निष्क्रिय कर देती हैं कि वो जो फैलने का डर था, वो फैलने का डर काफी हद तक कम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: फिर भी ऐसा कोई परहेज नहीं है, लेकिन जितना डिस्टेंस आप रख सके, खासतौर से छोटे बच्चों से, खांसते छींकते थूकते हमेशा अपना मुंह बंद रखें, अगर थूकना भी हो तो किसी जो राख के अंदर ऐसे कोई बर्तन बना के रखें और उसको किसी प्रॉपर जगह पर डिस्ट्रॉय करें, ये सावधानी बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। संभावना को देखते हुए कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, सरकार ने ऐसा भी औषधियां उपलब्ध करानी शुरू करी है कि अगर किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति को फेफड़े की टीबी है तो उसके परिवार में 5 साल से छोटे बच्चे प्लस सभी बड़े एडल्ट जितने भी हैं सबको सरकार 6 महीने तक दवा खिलाती है अलग से।
0: अच्छा।
1: टीबी की प्रॉपर दवा नहीं होती, पूरा वो कोर्स नहीं होता, मगर वो बचाव का एक कोर्स होता है, बच्चे और बड़े सारा वो कोर्स करते हैं 6 महीने का।
0: अच्छा।
1: ताकि वो बैक्टीरिया उस बच्चों और बड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
0: अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिसको बीमारी हो गई है टीबी की वो तो दवाएं खाएगा, लेकिन पूरा परिवार भी थोड़ी कम डोज वाली दवाई तो खानी है उसको।
1: वो बचाव के लिए एक कोर्स है, वो टेक्निकल पार्ट है, उस पर यहाँ बताने से कोई लाभ नहीं है, मगर वो सभी उस घर के रोगी जितने भी स्वस्थ हैं, अब तो सरकार ने नियम बनाया कि परिवार के जितने भी लोग हैं सबकी जांच होगी।
0: अच्छा।
1: सब लोग आइए अपनी जांच कराइए। जांच में 2 बातें होंगी, या तो वो सब ठीक होंगे या उनमें से कोई 1 या 2 व्यक्ति को टीबी का रोग हो सकता है। तो जितने भी व्यक्ति टीबी के रोग ही निकलेंगे उन सबको तो टीबी की दवा चलेगी सेपरेटली, वो टीबी का मरीज है गया। लेकिन जितने भी व्यक्ति ऐसे होंगे बच्चों से लेकर बड़े तक जिनमें कोई रोग नहीं पाया गया टीबी का, उन सबको फिर टीबी से बचाव की दवाई चलाई जाएंगी पूरे 6 महीने तक।
0: 6 महीने तक।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। शुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, शुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त शुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, शुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों, आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: जय हिंद, ये नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मुंशी, और आज हम बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। इस संवाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीवान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वीके मिश्रा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार सभी को।
0: दोस्तों, आज की तेज तर्रार दुनिया, या मैं कहूँ डिजिटल सोशल मीडिया वाली दुनिया, ऐसे में आज की इस युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और राष्ट्रीयता से जोड़े रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सुभारती विश्वविद्यालय ने आगामी 21 अक्टूबर 2026 को एक महारैली का आयोजन करना तय किया है, जिसमें हम बात करेंगे अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। चलिए लेकर चलती हूँ आपको वीके मिश्रा जी के पास, और जानते हैं उनके विचार कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं।
1: थैंक यू वंशी जी। सबसे पहले तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस टू सुभारती यूनिवर्सिटी एंड एंटायर टीम ऑफ अखंड भारत। ये शब्द ही कितना आपको रोमांचित करता है जब अखंड भारत हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, और मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से स्कूलों को इंटीग्रेट करके बच्चों के बीच में एक उत्साह जागृत किया है, ये कमेंडेबल जॉब है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये सपना कि हमारा भारत अखंड रहे, और वो स्वाधीनता की जो उन्होंने एक विजन रखा था, उस विजन को कंटिन्यू करते हुए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो बहुत ही रोमांचकारी है, और बच्चे जिस रूप में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे मेरठ के लिए गर्व का विषय है।
0: मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आज का युवा जो है अपने देश के गौरवशाली इतिहास को लेकर पहले से अधिक जागरूक हो रहा है, या इसमें अभी और हमें एफर्ट्स करने की जरूरत है?
1: देखिए, एफर्ट्स करने की तो जरूरत डेफिनेटली है, बिकॉज जड़ों से जोड़े रखना ये हमारा दायित्व है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और युवा एक ऐसी शक्ति है जिसको सही दिशा उनसे सीनियर लोग ही दे सकते हैं
0: जी,
1: क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। लेकिन एक चीज हमें और भी देखना पड़ता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता में युवा पीढ़ी को उनकी दिशा को जानने की भी कोशिश हमें करना पड़ेगा
0: जी।
1: जैसे जो हमारे समय की बातें थी हम युवाओं पर थोप नहीं सकते हैं, हमें उनको सुनना पड़ेगा। तो जो आज हमारे यूथ हैं वो स्वाधीनता में अगर संस्कार जोड़ लें तो वो शायद हमारा परिपक्वता में हम पहुंच जाएंगे, मैच्योरिटी में हम पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं माई फ्रीडम एंड्स या अदर्स फ्रीडम एंड्स वेयर माइन वाज बिगिन। तो आपकी एक सीमा होती है, उस सीमा में रहते हुए अगर हम स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली सही है। यूथ को इस दिशा में हमेशा बनाए रखने के लिए हम सभी का दायित्व तो है कि उनको अपने रूट्स से जोड़े रखें, हम उनको बताएं कि हमारे रूट्स क्या थे। अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे नहीं, तो जो भी संस्कार उनके आसपास में मिल रहा है वो उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो निश्चित रूप से जितना है वो यूथ हमारी पावर है, और भारत में अब हम भारत जब बोलते हैं तो शायद वो इंडिया से थोड़ा हट के फीलिंग शुरू हो जाते हैं, और उसमें भी जब अखंड भारत वर्ड आता है तो हम केवल अपनी इंडियन या भारतीय संस्कृति को आज के परिदृश्य में ना देख के आज के 50 साल पहले किस रूप में हम, या 100 साल पहले किस रूप में भारत था, शायद उस ओर जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बताते रहें कि क्या हम थे।

0: और क्या हम हैं और क्या हमें होना है।
1: तो बिल्कुल सही कहा आपने विकी जी। जैसा कि बीते दिनों कुछ कॉम्पिटिशन्स हमारे द्वारा कराए गए यानी कि सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा, ऐसे में आपके स्कूल से काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया
0: जी।
1: तो उनके अंदर क्या एक्साइटमेंट आपको देखने को मिली?
0: एक्साइटमेंट तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है
1: जी।
0: पहले सुभारती का जो एक्साइटमेंट था वो हमारे तक पहुंचा, हमारा एक्साइटमेंट टीचर्स तक पहुंचा और टीचर्स का बच्चों तक पहुंच रहा है। तो मैं आपके एक जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो जिस रूप में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर शेयर होते हैं, मैं कई बार भूल जाता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्टिविटी आज हुई या नहीं, बट टीचर्स को पता है तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हो या अदर कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पर हमारे बच्चे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हम बच्चों को देना है वो है प्लेटफॉर्म। हम पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन तो स्कूल में भी करा सकते हैं, बट जब एक कोई मुहिम कोई बाहर की संस्था और खासतौर से मेरठ में रहने वाली कोई हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशन भारती जैसी कराती है, तो बच्चों को लगता है कि हमें कोई दूसरा भी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है
1: जी।
0: तो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं बच्चे और ये हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो सुभारती प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं दिल से अपने दीवान परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये कार्यक्रम तो सफल हो ही जाएगा
1: जी।
0: लेकिन ये सफलतम स्थान प्राप्त करे, इसके लिए बेस्ट विशेस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्योंकि आज का ये डिजिटल एरा है, हर बच्चा मशगूल है सोशल हैंडल्स पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, उनकी एक अलग दुनिया चल रही है
0: जी।
1: ऐसे में आपकी और उनके गार्जियंस की जिम्मेदारी शायद डबल नहीं ट्रिपल ना जाने कितने टाइम्स हो जाती है। ऐसे में एक बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना इनकलकेट करना या उसे देश हित के बारे में प्लस उसके स्वयं के हित के बारे में जागरूक कराना ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए आप उनके गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए सभी गार्जियंस जो हमारे दीवान पब्लिक स्कूल परिवार से हैं या मेरठ से जो कहीं भी किसी भी स्कूल में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि जब हमारे आसपास गड्ढे होते हैं ज्यादा तो हम बच्चों के हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं कि कहीं कोई उनका पैर फिसल न जाए। तो चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो सोशल डिग्रेडेशन हो, कहीं ना कहीं सोशल हमारा डिग्रेडेशन हुआ है, वो वैल्यू सिस्टम में भी कह सकते हो, बट वो ऐसा नहीं कि परमानेंट है, आज है कल नहीं रहेगा। तो एज अ पेरेंट हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के हैंड होल्डिंग करें, उनको डेली सुने और जो भी कार्यक्रम हमारे संस्थाओं के माध्यम से होते हैं वो कंपटीशन की भावना से नहीं बल्कि शेयरिंग एंड केयरिंग की भावना से उसमें पार्टिसिपेट करें बच्चे। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम मेरठ में देख रहे हैं जब से है, चाहे वो एयर शो का होना हो, चाहे एशियन चैंपियन बन के हमारी गर्ल आई हो, तो ये बहुत बड़े ऐसे ही मोटिवेशन हो। क्रिकेट के फील्ड में अगर देखें तो ऐसे देश का नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बच्चे यूथ, कि हमें उन पे शक नहीं होना चाहिए लेकिन सुरक्षा हमें देनी है। तो शक और सुरक्षा में डिफरेंस यही है कि हमें क्वेश्चन नहीं लगाना है कि वो कितने अच्छे या बुरे हैं, जजमेंट नहीं है, जज नहीं बनना है, लेकिन ये जरूर उनको संभावित खतरों से आगाह कराना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर एक सीड जैसे होता है ना, एक पेड़ अगर लगाते हैं तो हम पेड़ के पहले जो बीज होता है उसको जमीन के नीचे डालते हैं। अब वो पेड़ हो सकता है जमीन के अंदर जो बीज जा रहा है उसको कष्ट हो रहा होगा कि मुझे जमीन के अंदर क्यों डाला जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसी से वो अंकुरित होकर बड़ा वृक्ष बनेगा। तो ये हमें देखने की जरूरत है और सभी पेरेंट्स से मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो, उनके आगे पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं, बस साथ चलते रहे।
1: बिल्कुल मिश्रा जी, विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम की भावना
0: जी।
1: या बात करें एक सांस्कृतिक भावना को डेवलप करने के लिए हमारा स्कूल यानी कि दीवान पब्लिक स्कूल क्या आगे सोच रहा है करने के लिए?
0: देखिए सबसे पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज के टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज है
1: जी।
0: वो सहगामी क्रियाएं हैं, साथ साथ चलने वाली, पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली। और हम शिक्षा को पूर्ण मानते हैं हेड हैंड एंड हार्ट से। हेड जो हमारे दिमाग में आता है, हैंड जो हम एक्टिविटीज करते हैं और हार्ट जो हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो ये तीनों साथ साथ डेवलप करने के लिए हमारे बच्चों के लिए हम वर्कशॉप्स भी कराते हैं और सुभारती के जो भी हमारे फैकल्टीज जानने वाले हैं मैं तो वहाँ से काफ़ी हेल्प लेता हूँ, चाहे वो डांस डिपार्टमेंट हो, आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट हो, और वहाँ से जो भी हमारे पास फैकल्टी आके हमारे बच्चों को मोटिवेट करती है, बिकॉज हमारे बच्चे नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस लेवल के कल्चरल इंटीग्रेशन है ऑलरेडी है, और जो भी हमारे बेस्ट रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइज करते हुए, और जितने कॉम्पिटिशन अभी इस बीच में मेरठ में हुए, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे, कहीं डांस हुआ है तो उसमें आए हैं, कहीं और ऑन स्पॉट रॉक बैंड परफॉर्म किया उसमें आए हैं, कहीं स्टेम के कंपटीशन हुए उसमें आए हैं, तो डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट में कल्चरल परफॉर्मेंसेस और प्रेजेंटेशंस हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज के पार्ट हैं, एक्स्ट्रा नहीं।
1: सर एक वर्ड सुभारती यूनिवर्सिटी की।
0: हाँ, सुभारती यूनिवर्सिटी तो एक वर्ड से अगर हम बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से माचिस की तीली छोटी होती है बट जब वो जल जाती है तभी बाकी दिए जलते हैं
1: जी।
0: तो जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं शुभारती की तरफ से वो यूनिक होते हैं
1: जी।
0: और शुभकामनाएं सभी को, शुभारती यूनिवर्सिटी के पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को और यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को, कि आप जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं मेरठ के लिए वो अतुलनीय है, ऐसे ही करते रहें, और जहाँ भी हम जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है हाथ से हाथ मिलाकर हम चलेंगे। थैंक यू सो मच।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर।

0: के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: जय हिंद, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वंशी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम व सुभारती विश्वविद्यालय से। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल रक्षापुरम में, और आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ के प्रबंधक महोदय कर्नल पाल प्रमोद जी। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जवाबदेही बनाना होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि आगामी 21 अक्टूबर 2026 को सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है महारैली, और इस महारैली में हम मना रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस। जब ऐसे आयोजन होते हैं तो दिल करता है कि देशभक्ति की इस लहर में बस डूब जाए और बहते चले। लेकिन क्या आपको पता है कि 21 अक्टूबर अपने आप में कितना बड़ा दिन हो जाता है? इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे यहाँ के प्रबंधक महोदय कर्नल पाल प्रमोद जी से। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मंत्रिका जी।
0: तो जैसा कि सर 21 अक्टूबर 1943 की बात करें, जब नेताजी ने अखंड भारत की घोषणा की थी सिंगापुर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, वास्तविकता तो यही है
0: जी।
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता को पाने के लिए, और बहुत से मतभेद उनके उस समय के नेताओं से, खास तौर से गांधी जी से हुए, और उन्होंने अपनी अलग आजाद हिंद फौज बनाई। आज जिस भारत को स्वतंत्रता की जो प्रशंसा करें या स्वतंत्रता का जो श्रेय ले रहे हैं जो लोग, वास्तव में वो श्रेय जाना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने तो अखंड भारत को स्वतंत्र करा दिया था 21 अक्टूबर 1943 को ही, और सिंगापुर में उसकी स्थापना हो गई थी, जिसको कि रिकॉग्निशन भी मिल गई थी बहुत से देशों से
0: जी।
1: लेकिन दुर्भाग्यवश वो चीज अमल में नहीं आई, और हमको अब ये पढ़ाया गया कि स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिली, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है
0: जी। मैं ये जानना चाहूंगी कर्नल सर कि जैसे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किताबी दुनिया से निकालकर जमीनी स्तर पर ऐसे जो राष्ट्रीय अभियान होते हैं, जैसे कि सुभारती विश्वविद्यालय आगामी 21 तारीख को करने वाला है
1: जी,
0: उससे जोड़ना कितना जरूरी है? एक स्कूल के प्रबंधक होने के नाते आप इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं?
1: मैं कहूंगा कि ये सुभारती विश्वविद्यालय की बहुत ही सुंदर पहल है, बहुत ही सुंदर प्रयास है कि युवा वर्ग को जो वास्तविकता है, और खास तौर से अपने आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान स्वतंत्रता के लिए रहा है, उससे अवगत कराना। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने ये बच्चों को नेताजी के जुड़े हुए संदर्भों पे ऐसे कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और प्रश्नोत्तरी जैसी चीजें तैयार करी हैं, और बच्चों को उनको उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो ये यही एक तरीका है हम अपने बच्चों को बता सकते हैं
0: जी।
1: तो बच्चे तो जो स्कूल कॉलेजेस में अभी तक भी जो सिलेबस किताबें हैं, वो तो वही पुराने लोगों की बनाई हुई हैं, जिसके अंदर ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं
0: जी।
1: पर अब धीरे धीरे नई एजुकेशन जो नीति है उसके अंतर्गत प्रयास चल रहे हैं, वो तो समय लेंगे, स्कूल कॉलेज के लेवल पे तो ये इतना जल्दी नहीं है, लेकिन ये सबसे सुंदर प्रयास है जिसमें बच्चे हर स्कूलों के ले रहे होंगे। हमारे तो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, टीचर्स भाग ले रही हैं और सब तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छा उनको एक एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिल रहा है।
0: बहुत बढ़िया, मुझे जानकर खुशी हुई। मैं कहना सर ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आप इस स्कूल के जैसे प्रबंधक हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप भी कुछ अपना योगदान दें फर्दर इस प्रोग्राम के बाद, तो आप क्या करना चाहेंगे ताकि बच्चों में राष्ट्र चरित्र को बनाने का एक मौका मिल सके?
1: देखिए, ये जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इनको देख के दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, और हम अपना जैसे बहुत से सब्जेक्ट SST वगैरह पढ़ाते हैं या जनरल नॉलेज के पीरियड्स चल रहे हैं, हम अपने सिलेबस के अंदर जोड़ेंगे इन चीजों को
0: जी।
1: नेताजी के ऊपर पूरा हम उस तरह की प्रश्नोत्तरी हम और बड़े, अभी तो थोड़े से ही बच्चों ने करा है, लेकिन हम सब बच्चों के लिए कंपलसरी करेंगे, उनके लिए ऐसा हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि ये सब चीजें उनको बताई जाएं।
0: जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जैसे एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी स्कूल के पास होती है, बिल्कुल वैसे ही अभिभावक के पास भी होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने देश के बारे में जाने, राष्ट्रहित के बारे में जाने और अपने संस्कृति और संस्कार से जुड़े रहे।
1: देखिए, मेरा अभिभावकों से सामूहिक रूप पे मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि वो इकट्ठे हों, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ और बहुत से मसले होते हैं, उतना वो नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस मुद्दे के लिए हम विशेष कुछ तरह की मीटिंग अभिभावकों के साथ रखेंगे।
0: जी,
1: जिस तरह से कि मंथ में पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है, पीटीएम होती है, इसी तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी संडे को अभिभावकों को बुलाएं और उनको भी इससे जोड़ें।
0: बिल्कुल, बहुत सही जानकारी आपने दी और मुझे लगता है जो भी आप इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं ये काफी अच्छा रहने वाला है। और अभी से मेरी शुभकामनाएं, सुभारती विश्वविद्यालय की शुभकामनाएं आपके साथ है और हम इस पहल में हर कदम पर आपके साथ रहने वाले हैं।
1: धन्यवाद, हम भी आपको पूर्ण सहयोग करेंगे।
0: तो दोस्तों, आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान का पवित्र कर्ज है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आइए इस महारैली में सम्मिलित होकर के एक छोटा सा प्रयास करते हैं इस कर्ज को चुकाने का। हमसे जुड़ जाइए 21 अक्टूबर 2026 को और इस रैली में हमारा सहयोग कीजिए और अपना कीमती वक्त दीजिए। जय हिंद।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
5: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
4: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

0: जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम सुभारती विश्वविद्यालय से। आज हम आए हैं वर्धमान एकेडमी गंगानगर में और मेरे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं यहां की प्रिंसिपल साहिबा मिस रेखा शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है। आज रेखा जी से बहुत सारी बातें होंगी और हम जानेंगे कि 21 अक्टूबर को क्या ऐसा खास हो जाता है जो आज इस मुकाम पर हमें ले आया है कि हम आपसे संवाद करना चाहते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इतिहास रचा जाता है, केवल पढ़ा और लिखा नहीं जाता। और जब बात आती है 21 अक्टूबर की तारीख की तो जनाब मायने बदल जाते हैं, क्योंकि इस दिन से हमें ये पता चला कि जब इरादे बुलंद हों, जब हौसले बुलंद हों, तो कुछ भी असंभव नहीं है। 21 अक्टूबर 1943 का वो गौरवशाली दिन जो हमें याद दिलाता है कि जब आप कुछ ठान लेते हैं तो आप उसको कर कर ही गुजरते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में ये घोषणा की कि हम अखंड भारत की स्थापना कर सकते हैं, यानी हमारा जो भारत है वो अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस अपना मना सकता है। और इसमें हमारे साथ 9 देशों की स्वीकृति भी आई, हमारे साथ 9 देश खड़े रहे। हमारे पास सब कुछ था, अपना ध्वज, अपना राष्ट्रगान, अपनी फौज और अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को सभी लोग नहीं जानते। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुभारती विश्वविद्यालय ने आगामी 21 अक्टूबर 2026 को एक ऐसी महारैली का आयोजन किया है जहां पर मेरठ के विभिन्न बड़े बड़े या मैं कहूँ प्रेस्टीजियस स्कूल्स हिस्सा लेंगे। और इस रैली में बच्चों को कोशिश की जाएगी इस बारे में बताने की कि जो हमारा सच्चा इतिहास है वो क्या कहता है। इसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे और हमसे जुड़ेंगी मिस रेखा शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जो सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही ये रैली है, आपके इस पर क्या विचार है?
1: सबसे पहले तो मैं सुभारती विश्वविद्यालय के प्रबंध समिति को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, क्योंकि ये जो जानकारी आप प्रदान करने चले हैं विद्यार्थियों के लिए
0: जी,
1: ये अपने आप में एक विशेष जानकारी है। जनरली स्कूल्स में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो जाता है, और समस्या यह है कि हम सेलिब्रेट तो सब कर रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन क्या हम उन मूल्यों को इम्बाइब भी कर पा रहे हैं?
0: yes.
1: या वो जो वास्तविक जानकारी है उससे हमारे बच्चे उसके जानकार भी हैं या नहीं है? तो ये बड़ा एक चिंतित करने वाला प्रश्न है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन शायद वो सेलिब्रेशन के रूप में ही मनकर रह जाता है। अब ये जो एक महीने से भी ज्यादा का जो एक प्रयास चल रहा है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम स्टूडेंट्स को ये जानकारी प्रदान कर पा रहे हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, केवल 15 अगस्त पे ध्वजारोहण करना या 26 जनवरी को वंदे मातरम का गुणगान कर लेना, केवल यही वास्तविक स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन नहीं है या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नहीं है। सबसे जो चिंतित विषय जो आजकल नजर आता है कि बच्चों में जो बच्चों के जो मूल्य हैं, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में है या राष्ट्रीयता के बारे में है, वो सब कहीं ना कहीं आज हीन होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब ऐसे में इसी एक ऐसे मिशन के साथ आना जहां सारे शहर के स्कूलों को जोड़ लेना और फिर बच्चों को ये जानकारी प्रदान करना, तो अपने आप में एक सराहनीय पहल है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं और वो यहां से प्राप्त जानकारी को स्कूल के बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी शेयर करें कि उनका भी जो ज्ञान है वास्तविक स्वतंत्रता को लेकर, हमारी अखंडता को लेकर, भारत की अखंडता को लेकर, तो वो भी उसके प्रति जागरूक बने।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं रेखा जी ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे अखंड भारत का ये स्वतंत्रता दिवस जो कि 21 अक्टूबर को मनाना जाना चाहिए,
1: हाँ।
0: हम मनाते भी हैं, लेकिन क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव है, बच्चों में जानकारी का अभाव है, तो इसके चलते हमारा तो ये मानना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहां पर एजुकेशन प्रदान की जाती है वहां पर कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी दिया जाए जहां पर बच्चों को ऐतिहासिक चीजों के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में, यहां के संस्कार के बारे में और सबसे स्पेशली सच्चे इतिहास के बारे में जानकारी हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, जो आजकल सबसे बड़ा चिंता का विषय है, आजकल का जो यूथ है वो अपने मिशन से, अपने मूल्यों से भटका हुआ है
0: जी।
1: आजकल हर अपनी जिद को पूरा करना आप कह लीजिए
0: जी जी,
1: या अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बड़ा आसान तरीका बनाया हुआ है, धरना दे दीजिए
0: जी
1: और वायलेंट तरीके से प्रदर्शन कर लीजिए और कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हो जाती है सरेंडर करने के लिए, चाहे वो जायज है या नहीं है। तो ऐसे में बच्चों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी।
1: और जब सुबह की जो हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, यदि हम उसमें एक रेगुलर थीम इस तरीके की डाल दें कि हमें रोज हम अपने देश के बारे में बच्चों से बात करें, अपने शहर के बारे में बात करें, बच्चों को नहीं पता हमारे महापौर कौन है, बच्चों को नहीं पता हमारे विधायक कौन है, क्योंकि उनसे कभी इस बारे में बात नहीं होती। ये बात होती है केवल जब कोई पर्व आता है या कोई सेलिब्रेशन करना होता है स्कूल में, तो बहुत सूक्ष्म जानकारी उनको दे दी जाती है। तो ये उनके एक रेगुलर असेंबली का हिस्सा हो सकता है जिससे वो इन तथ्यों से जुड़े रहें, उनका रिकॉल किया जाना चाहिए जिससे कि वो उनके प्रतिदिन दैनिक जीवन का हिस्सा बने और उन्हें देश के बारे में, अपने शहर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो, और वो ऐसी जानकारी नहीं हो कि हमने आज सुनी और कल खत्म हो जाए। इट शुड बी इम्बाइब इन देयर पर्सनालिटी एंड देयर कैरेक्टर। तो दैट शुड बी थ्रू मॉर्निंग असेंबलीज, थ्रू सर्टेन एक्टिविटीज, जहां हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि बच्चों को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में हम उनको जानकारी दें कि कैसे एक विकसित भारत में हम कैसे, हमारा क्या, हमारी एज अ स्टूडेंट क्या जिम्मेदारी
0: कैसे है।
1: तो उसके लिए प्रयासरत है विद्यालय और हम प्रतिदिन अपना ऐसा प्रयास करते हैं कि बच्चों में इस तरीके की जो भावना है वो विकसित की जा सके।
0: तो रेखा जी, आगामी जो कार्यक्रम है जो महारैली सुभारती विश्वविद्यालय आयोजित करने जा रहा है, इसमें आपके स्कूल में क्या तैयारियां चल रही हैं, बच्चों में क्या उत्साह है, क्या जोश है इसके बारे में?
1: बच्चों में उत्साह है क्योंकि उन्हें एक इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला और एक जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जब बच्चों को ये पता है कि शहर के बड़े बड़े स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मिलना और फिर एक प्रतिस्पर्धा के साथ उसके लिए तैयारी करना, तो बच्चों में इसको लेकर एक उत्साह है और वो जिज्ञासु है ये सब जानने के लिए कि क्या होगा, क्या कैसे होगा, तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज एक्टिविटीज।
0: जी, तो रेखा जी, जैसा कि आज का सिनेरियो है, यहाँ पर बच्चा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रहा है या मैं कहूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ भाग रहे, तो ऐसे में बच्चे का जो विवेक है डिसीजन मेकिंग का वो बहुत ज्यादा ऑल ऑफ सडन हो गया है। तो ऐसे में हम किस तरीके से बच्चे को ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो ऑल ऑफ सडन डिसीजन मेकिंग ना करे या किसी भी चीज को बिना किसी ऑथेंटिकेशन के माने ना, क्योंकि ऐसे में बच्चा अपने लक्ष्य से भटक तो रहा ही है और हमारे लिए एज एजुकेटर, एज अ इतने बड़े सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या जो हमारे गार्जियन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने अपब्रिंगिंग में कुछ इन चीजों को इंक्लूड करें ताकि आपका भी सहयोग हो सके और बच्चे का जो चरित्र निर्माण है वो भी बेहतर हो सके?
1: देखिए, जो अभिभावक, स्टूडेंट और स्कूल का जो रिलेशन है वो थ्री टायर है। अगर आप किसी एक को भी कमजोर कर देंगे या इग्नोर कर देंगे तो ओनली द स्टूडेंट वुड बी सफरिंग।
0: यस,
1: सो वी ऑल नीड टू वर्क टूगेदर। बीइंग पेरेंट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स दैट दे शुड गिव क्वालिटी टाइम टू देयर चिल्ड्रन रादर देन, बिकॉज वी नो दैट एवरीबॉडी इज बिजी, बट इट डजंट मीन दैट वट एवर यू आर वर्किंग, वट एवर यू आर अर्निंग, इट इज फॉर योर किड्स ओनली।
0: यस,
1: एंड इफ यू आर नॉट गिविंग योर क्वालिटी टाइम टू देम, सो इट दिस मनी डजंट मेक एनी सेंस।
0: यस,
1: अगर आपका बच्चा मिसलीडेड है, अगर आपका बच्चा डाइवर्ट है, अगर उसके बच्चे को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी जिम्मेदारी अभिभावक की भी होती है, स्कूल की भी होती है, और वो तभी संभव है जब पेरेंट्स अपना क्वालिटी टाइम बच्चे को दें, उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी जिज्ञासा को शांत करें। सेम इज कंसिडर्ड विद द स्कूल एज वेल। यदि बच्चे के मन में कोई भी जिज्ञासा है या बच्चे की कोई प्रॉब्लम हम ट्रेस आउट कर पा रहे हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है बच्चा तो मुझे उसे इग्नोर नहीं करना, मुझे उस बच्चे से बात करनी है। काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग स्कूल्स में कंपलसरी कर दी गई है। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए कि बच्चों को चैनलाइज रखा जाए, अगर बच्चे हाइपर एनर्जेटिक हैं तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए
0: जी।
1: जो तब तक संभव नहीं है जब तक अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी, जब तक वो तीनों मिलके उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उस जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं बच्चे और अभिभावक का ही है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी सावधानी से और बच्चे की जरूरतों को, आवश्यकताओं को समझते हुए उनके विजन को पढ़ते हुए उनको गाइड करना है. एवरी टाइम अ पेरेंट और अ टीचर कैन नॉट इम्पोज, वी नीड टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन द प्रोसेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट वट एवर डिसीजन इज बींग टेकन बाय द स्कूल और बाय द पेरेंट दैट इज गुड ओनली फॉर हिम. इफ यू विल इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड विल नॉट लिसन, इफ यू विल इन्वॉल्व हिम द चाइल्ड विल डेफिनेटली फॉलो यू. सो माई सजेशन इज कि बच्चों के ना तो बिल्कुल दोस्त बन जाए ना ही बिल्कुल उनसे एक किनारा कर लें. एक मीडियोकर पाथ हमें बनाना है जिसपे हम मिलकर बच्चे का एक संपूर्ण विकास कर सकें और उसे अच्छे बुरे को जज करने के लिए उस बच्चे को हम तैयार कर सकें कि वो गलती से या रैंडम कोई डिसीजंस ना ले, पीयर प्रेशर में ना आए जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है. क्योंकि उनके हिसाब से या तो गूगल बाबा सब कुछ है या उनके दोस्त सबसे अच्छे वैल्यूशन हैं. तो वो जो थिन लाइन है इन सबके बीच में हमें उसको स्टडी करना होगा और अपने बच्चों को के समग्र विकास के लिए उनका मानसिक बौद्धिक विकास करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना. तो यही मेरा जो संदेश है अभिभावक के लिए कि उन्हें अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी समस्याओं पर को सुनना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा रेखा जी. और मेरा भी यही मानना है कि इसमें पेरेंट, एक टीचर और एक विद्यार्थी, तीनों की उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है जितनी कि हम सोचते हैं कि सिर्फ एक एंड से ही सब कुछ हो जाए. वो बिल्कुल उससे काम नहीं बनेगा, आपके बच्चे का नुकसान हो सकता है. दोस्तों आपको बताऊं, 21 अक्टूबर 2026 को जो आगामी है अभी, उस दिन सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम कुछ ऐसे मूल्यों पर काम कर रहे हैं जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास शामिल है, जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार या राष्ट्रीयता. इन सभी मूल्यों को हम साथ में लेकर के बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए परस्पर है और तैयार है. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं. और मैं यही कहूंगी कि आप भी इस आगामी रैली में अपना योगदान दें, अपना कीमती वक्त दें. जय हिंद, धन्यवाद.

ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आप

0: को मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
3: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।
4: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
5: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
7: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
8: हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भूटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मुंशी, और आज हम बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। इस संवाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीवान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वी के मिश्रा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार सभी को।
0: दोस्तों, आज की इस तेज तर्रार दुनिया, या मैं कहूँ डिजिटल सोशल मीडिया वाली दुनिया, ऐसे में आज की इस युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और राष्ट्रीयता से जोड़े रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सुभारती विश्वविद्यालय ने आगामी 21 अक्टूबर 2026 को एक महारैली का आयोजन करना तय किया है, जिसमें हम बात करेंगे अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। चलिए लेकर चलती हूँ आपको वीके मिश्रा जी के पास और जानते हैं उनके विचार कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं।
1: थैंक यू वंशी जी। सबसे पहले तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस टू सुभारती यूनिवर्सिटी एंड एंटायर टीम ऑफ अखंड भारत। ये शब्द ही कितना आपको रोमांचित करता है जब अखंड भारत हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, और मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से स्कूलों को इंटीग्रेट करके बच्चों के बीच में एक उत्साह जागृत किया है, ये कमेंडेबल जॉब है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये सपना कि हमारा भारत अखंड रहे, और वो स्वाधीनता की जो उन्होंने एक विजन रखा था, उस विजन को कंटिन्यू करते हुए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो बहुत ही रोमांचकारी है। और बच्चे जिस रूप में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे मेरठ के लिए गर्व का विषय है।
0: मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आज का युवा जो है अपने देश के गौरवशाली इतिहास को लेकर पहले से अधिक जागरूक हो रहा है, या इसमें अभी और हमें एफर्ट्स करने की जरूरत है?
1: देखिए, एफर्ट्स करने की तो जरूरत डेफिनेटली है, बिकॉज जड़ों से जोड़े रखना ये हमारा दायित्व है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और युवा एक ऐसी शक्ति है जिसको सही दिशा उनसे सीनियर लोग ही दे सकते हैं
0: जी,
1: क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। लेकिन एक चीज हमें और भी देखना पड़ता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता में युवा पीढ़ी को उनकी दिशा को जानने की भी कोशिश हमें करना पड़ेगा
0: जी।
1: जैसे जो हमारे समय की बातें थी हम युवाओं पर थोप नहीं सकते हैं, हमें उनको सुनना पड़ेगा। तो जो आज हमारे यूथ हैं वो स्वाधीनता में अगर संस्कार जोड़ लें तो वो शायद हमारा परिपक्वता में हम पहुंच जाएंगे, मैच्योरिटी में हम पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं माई फ्रीडम एंड्स या अदर्स फ्रीडम एंड्स वेयर माइन वाज बिगिन। तो आपकी एक सीमा होती है, उस सीमा में रहते हुए अगर हम स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली सही है। यूथ को इस दिशा में हमेशा बनाए रखने के लिए हम सभी का दायित्व तो है कि उनको अपने रूट से जोड़े रखें, हम उनको बताएं कि हमारे रूट्स क्या थे। अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे नहीं, तो जो भी संस्कार उनके आसपास में मिल रहा है वो उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो निश्चित रूप से जितना है वो यूथ हमारी पावर है, और भारत में अब हम भारत जब बोलते हैं तो शायद वो इंडिया से थोड़ा हट के फीलिंग शुरू हो जाते हैं, और उसमें भी जब अखंड भारत वर्ड आता है तो हम केवल अपनी इंडियन या भारतीय संस्कृति को आज के परिदृश्य में ना देख के आज के 50 साल पहले किस रूप में हम या 100 साल पहले किस रूप में भारत था, शायद उस ओर जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बताते रहें कि क्या हम थे और क्या हम हैं और क्या हमें होना है।
0: तो बिल्कुल सही कहा आपने विकी जी। जैसा कि बीते दिनों कुछ कॉम्पिटिशन्स हमारे द्वारा कराए गए, यानी कि सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा, ऐसे में आपके स्कूल से काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो उनके अंदर क्या एक्साइटमेंट आपको देखने को मिली?
1: एक्साइटमेंट तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है
0: जी।
1: पहले सुभारती का जो एक्साइटमेंट था वो हमारे तक पहुंचा, हमारा एक्साइटमेंट टीचर्स तक पहुंचा, और टीचर्स का बच्चों तक पहुंच रहा है। तो मैं आपके एक जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो जिस रूप में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर शेयर होते हैं, मैं कई बार भूल जाता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्टिविटी आज हुई या नहीं, बट टीचर्स को पता है तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट में मेकिंग कॉम्पिटिशन हो या अदर कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पर हमारे बच्चे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हम बच्चों को देना है वो है प्लेटफॉर्म। हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन तो स्कूल में भी करा सकते हैं, बट जब एक कोई मुहिम कोई बाहर की संस्था और खासतौर से मेरठ में रहने वाली कोई हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशंस भारतीय जैसी कराती है तो बच्चों को लगता है कि हमें कोई दूसरा भी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है
0: जी।
1: तो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं बच्चे, और ये हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो सुभारती प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं दिल से अपने दीवान परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम तो सफल हो ही जाएगा
0: जी।
1: लेकिन ये सफलतम स्थान प्राप्त करे, इसके लिए बेस्ट विशेष।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्योंकि आज का ये डिजिटल एरा है, हर बच्चा मशगूल है सोशल हैंडल्स पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, उनकी एक अलग दुनिया चल रही है
1: जी।
0: ऐसे में आपकी और उनके गार्जियंस की जिम्मेदारी शायद डबल नहीं ट्रिपल ना जाने कितने टाइम्स हो जाती है। ऐसे में एक बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना इनकलकेट करना या उसे देश हित के बारे में प्लस उसके स्वयं के हित के बारे में जागरूक कराना ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए आप उनके गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए सभी गार्जियंस जो हमारे दीवान पब्लिक स्कूल परिवार से हैं या मेरठ से जो कहीं भी किसी भी स्कूल में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि जब हमारे आसपास गड्ढे होते हैं ज्यादा तो हम बच्चों के हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं कि कहीं कोई उनका पैर फिसल न जाए। तो चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो सोशल डिग्रेडेशन हो, कहीं ना कहीं सोशल हमारा डिग्रेडेशन हुआ है, वो वैल्यू सिस्टम में भी कह सकते हो, बट वो ऐसा नहीं कि परमानेंट है, आज है कल नहीं रहेगा। तो एज अ पेरेंट हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के हैंड होल्डिंग करें, उनको डेली सुने, और जो भी कार्यक्रम हमारे संस्थाओं के माध्यम से होते हैं वो कंपटीशन की भावना से नहीं बल्कि शेयरिंग एंड केयरिंग की भावना से उसमें पार्टिसिपेट करें बच्चे। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम मेरठ में देख रहे हैं जब से है, चाहे वो एयर शो का होना हो, चाहे एशियन चैंपियन बन के हमारी गर्ल आई हो, तो ये बहुत बड़े ऐसे ही मोटिवेशन हो। क्रिकेट के फील्ड में अगर देखें तो ऐसे देश का नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बच्चे यूथ, कि हमें उन पे शक नहीं होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा हमें देनी है। तो शक और सुरक्षा में डिफरेंस यही है कि हमें क्वेश्चन नहीं लगाना है कि वो कितने अच्छे या बुरे हैं, जजमेंट नहीं है, जज नहीं बनना है, लेकिन ये जरूर उनको संभावित खतरों से आगाह कराना है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर एक सीड जैसे होता ना, एक पेड़ अगर लगाते हैं तो हम पेड़ के पहले जो बीज होता है उसको जमीन के नीचे डालते हैं। अब वो पेड़ हो सकता है जमीन के अंदर जो बीज जा रहा है उसको कष्ट हो रहा होगा कि मुझे जमीन के अंदर क्यों डाला जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसी से वो अंकुरित होके बड़ा वृक्ष बनेगा। तो ये हमें देखने की जरूरत है, और सभी पेरेंट्स से मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो, उनके आगे पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं, बस साथ चलते रहें।
0: बिल्कुल मिश्रा जी, विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम की भावना
1: जी।
0: या बात करें एक सांस्कृतिक भावना को डेवलप करने के लिए हमारा स्कूल यानी कि दीवान पब्लिक स्कूल क्या आगे सोच रहा है करने के लिए?
1: देखिए सबसे पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज के टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज है
0: जी।
1: वो सहगामी क्रियाएं हैं, साथ साथ चलने वाली, पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली, और हम शिक्षा को पूर्ण मानते हैं हेड हैंड एंड हार्ट से। हेड जो हमारे दिमाग में आता है, हैंड जो हम एक्टिविटीज करते हैं, और हार्ट जो हमारी फीलिंग्स होती हैं
0: जी।
1: तो ये तीनों साथ साथ डेवलप करने के लिए हमारे बच्चों के लिए हम वर्कशॉप्स भी कराते हैं, और सुभारती के जो भी हमारे फैकल्टीज जानने वाले हैं मैं तो वहाँ से काफ़ी हेल्प लेता हूँ, चाहे वो डांस डिपार्टमेंट हो, आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट हो, और वहाँ से जो भी हमारे पास फैकल्टी आके हमारे बच्चों को मोटिवेट करती है, बिकॉज हमारे बच्चे नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस लेवल के कल्चरल इंटीग्रेशन है ऑलरेडी है, और जो भी हमारे बेस्ट रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइज करते हुए, और जितने कंपटीशन अभी इस बीच में मेरठ में हुए मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, कहीं डांस हुआ है तो उसमें आए हैं, कहीं और ऑन स्पॉट रॉक बैंड परफॉर्म किया उसमें आए हैं, कहीं स्टेम के कंपटीशन हुए उसमें आए हैं, तो डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट में कल्चरल परफॉर्मेंसेज और प्रेजेंटेशंस हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज के पार्ट हैं, एक्स्ट्रा नहीं।
0: सर एक वर्ड सुभारती यूनिवर्सिटी की।
1: हाँ सुभारती यूनिवर्सिटी तो एक वर्ड से अगर हम बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से माचिस की तीली छोटी होती है बट जब वो जल जाती है तभी बाकी दिए जलते हैं। तो जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं शुभारती की तरफ से वो यूनिक होते हैं
0: जी।
1: और शुभकामनाएं सभी को, शुभारती यूनिवर्सिटी के पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को और यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को कि आप जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं मेरठ के लिए वो अतुलनीय है, ऐसे ही करते रहे। और जहाँ भी हम जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है हाथ से हाथ मिला के हम चलेंगे। थैंक यू सो मच।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: जय हिंद। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वंशी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM व सुभारती विश्वविद्यालय से। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल रक्षापुरम में, और आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ के प्रबंधक महोदय कर्नल पाल प्रमोद जी। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जवाबदेही बनाना होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि आगामी 21 अक्टूबर 2026 को सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है महारैली, और इस महारैली में हम मना रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस। जब ऐसे आयोजन होते हैं तो दिल करता है कि देशभक्ति की इस लहर में बस डूब जाए और बहते चले। लेकिन क्या आपको पता है कि 21 अक्टूबर अपने आप में कितना बड़ा दिन हो जाता है? इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे यहाँ के प्रबंधक महोदय कर्नल पाल प्रमोद जी से। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार सर।
1: नमस्कार वंशिका जी।
0: तो जैसा कि सर 21 अक्टूबर 1943 की बात करें, जब नेताजी ने अखंड भारत की घोषणा की थी सिंगापुर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, वास्तविकता तो यही है
0: जी।
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता को पाने के लिए, और बहुत से मतभेद उनके उस समय के नेताओं से, खास तौर से गांधी जी से हुए, और उन्होंने अपनी अलग आजाद हिंद फौज बनाई। आज जिस भारत को स्वतंत्रता की जो प्रशंसा करें या स्वतंत्रता का जो श्रेय ले रहे हैं जो लोग, वास्तव में वो श्रेय जाना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने तो अखंड भारत को स्वतंत्र करा दिया था 21 अक्टूबर 1943 को ही, और सिंगापुर में उसकी स्थापना हो गई थी, जिसको कि रिकॉग्निशन भी मिल गई थी बहुत से देशों से
0: जी।
1: लेकिन दुर्भाग्यवश वो चीज अमल में नहीं आई, और हमको अब ये पढ़ाया गया कि स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिली, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है
0: जी। मैं ये जानना चाहूंगी कर्नल सर कि जैसे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किताबी दुनिया से निकालकर जमीनी स्तर पर ऐसे जो राष्ट्रीय अभियान होते हैं, जैसे कि सुभारती विश्वविद्यालय आगामी 21 तारीख को करने वाला है
1: जी,
0: उससे जोड़ना कितना जरूरी है? एक स्कूल के प्रबंधक होने के नाते आप इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं?
1: मैं कहूंगा कि ये सुभारती विश्वविद्यालय की बहुत ही सुंदर पहल है, बहुत ही सुंदर प्रयास है कि युवा वर्ग को जो वास्तविकता है, और खास तौर से अपने आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान स्वतंत्रता के लिए रहा है, उससे अवगत कराना। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने ये बच्चों को नेताजी के जुड़े हुए संदर्भों पे ऐसे कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और प्रश्नोत्तरी जैसी चीजें तैयार करी हैं, और बच्चों को उनको उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो ये यही एक तरीका है हम अपने बच्चों को बता सकते हैं
0: जी।
1: तो बच्चे तो जो स्कूल कॉलेजेस में अभी तक भी जो सिलेबस किताबें हैं, वो तो वही पुराने लोगों की बनाई हुई हैं, जिसके अंदर ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं
0: जी।
1: पर अब धीरे धीरे नई एजुकेशन जो नीति है उसके अंतर्गत प्रयास चल रहे हैं, वो तो समय लेंगे। स्कूल कॉलेज के लेवल पे तो ये इतना जल्दी नहीं है, लेकिन ये सबसे सुंदर प्रयास है जिसमें बच्चे हर स्कूलों के ले रहे होंगे। हमारे तो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, टीचर्स भाग ले रही हैं और सब तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छा उनको एक एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिल रहा है।
0: बहुत बढ़िया, मुझे जानकर खुशी हुई। मैं कहना सर ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आप इस स्कूल के जैसे प्रबंधक हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप भी कुछ अपना योगदान दें फर्दर इस प्रोग्राम के बाद, तो आप क्या करना चाहेंगे ताकि बच्चों में राष्ट्र चरित्र को बनाने का एक मौका मिल सके?
1: देखिए, ये जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इनको देख के दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और हम अपना जैसे बहुत से सब्जेक्ट SST वगैरह पढ़ाते हैं या जनरल नॉलेज के पीरियड्स चल रहे हैं, हम अपने सिलेबस के अंदर जोड़ेंगे इन चीजों को
0: जी।
1: नेताजी के ऊपर पूरा हम उस तरह की प्रश्नोत्तरी हम और बड़े, अभी तो थोड़े से ही बच्चों ने करा है, लेकिन हम सब बच्चों के लिए कंपलसरी करेंगे, उनके लिए ऐसा हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि ये सब चीजें उनको बताई जाएं।
0: जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जैसे एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी स्कूल के पास होती है, बिल्कुल वैसे ही अभिभावक के पास भी होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने देश के बारे में जाने, राष्ट्रहित के बारे में जाने और अपने संस्कृति और संस्कार से जुड़े रहें।
1: देखिए, मेरा अभिभावकों से सामूहिक रूप पे मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि वो इकट्ठे हों, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ और बहुत से मसले होते हैं, उतना वो नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस मुद्दे के लिए हम विशेष कुछ तरह की मीटिंग अभिभावकों के साथ रखेंगे।
0: जी,
1: जिस तरह से कि मंथ में पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है, पीटीएम होती है, इसी तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी संडे को अभिभावकों को बुलाएं और उनको भी इससे जोड़ें।
0: बिल्कुल, बहुत सही जानकारी आपने दी और मुझे लगता है जो भी आप इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं ये काफी अच्छा रहने वाला है। और अभी से मेरी शुभकामनाएं, सुभारती विश्वविद्यालय की शुभकामनाएं आपके साथ है और हम इस पहल में हर कदम पर आपके साथ रहने वाले हैं।
1: धन्यवाद, हम भी आपको पूर्ण सहयोग करेंगे।
0: तो दोस्तों, आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान का पवित्र कर्ज है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आइए इस महारैली में सम्मिलित होकर के एक छोटा सा प्रयास करते हैं इस कर्ज को चुकाने का। हमसे जुड़ जाइए 21 अक्टूबर 2026 को और इस रैली में हमारा सहयोग कीजिए और अपना कीमती वक्त दीजिए। जय हिंद।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और

बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आरजे वंशी के साथ।

0: जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम सुभारती विश्वविद्यालय से। आज हम आए हैं वर्धमान एकेडमी गंगानगर में और मेरे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं यहां की प्रिंसिपल साहिबा मिस रेखा शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है। आज रेखा जी से बहुत सारी बातें होंगी और हम जानेंगे कि 21 अक्टूबर को क्या ऐसा खास हो जाता है जो आज इस मुकाम पर हमें ले आया है कि हम आपसे संवाद करना चाहते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इतिहास रचा जाता है, केवल पढ़ा और लिखा नहीं जाता। और जब बात आती है 21 अक्टूबर की तारीख की तो जनाब मायने बदल जाते हैं, क्योंकि इस दिन से हमें ये पता चला कि जब इरादे बुलंद हों, जब हौसले बुलंद हों, तो कुछ भी असंभव नहीं है। 21 अक्टूबर 1943 का वो गौरवशाली दिन जो हमें याद दिलाता है कि जब आप कुछ ठान लेते हैं तो आप उसको कर ही गुजरते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में ये घोषणा की कि हम अखंड भारत की स्थापना कर सकते हैं, यानी हमारा जो भारत है वो अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस अपना मना सकता है। और इसमें हमारे साथ 9 देशों की स्वीकृति भी आई, हमारे साथ 9 देश खड़े रहे। हमारे पास सब कुछ था, अपना ध्वज, अपना राष्ट्रगान, अपनी फौज और अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को सभी लोग नहीं जानते। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुभारती विश्वविद्यालय ने आगामी 21 अक्टूबर 2026 को एक ऐसी महारैली का आयोजन किया है जहां पर मेरठ के विभिन्न बड़े बड़े या मैं कहूँ प्रेस्टीजियस स्कूल्स हिस्सा लेंगे। और इस रैली में बच्चों को कोशिश की जाएगी इस बारे में बताने की कि जो हमारा सच्चा इतिहास है वो क्या कहता है। इसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे और हमसे जुड़ेंगी मिस रेखा शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रही हैं कि 21 अक्टूबर को जो सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही ये रैली है, आपके इस पर क्या विचार है?
1: सबसे पहले तो मैं सुभारती विश्वविद्यालय के प्रबंध समिति को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, क्योंकि ये जो जानकारी आप प्रदान करने चले हैं विद्यार्थियों के लिए जी, ये अपने आप में एक विशेष जानकारी है। जनरली स्कूल्स में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो जाता है, और समस्या यह है कि हम सेलिब्रेट तो सब कर रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन क्या हम उन मूल्यों को इम्बाइब भी कर पा रहे हैं?
0: यस।
1: या वो जो वास्तविक जानकारी है उससे हमारे बच्चे

0: उसके जानकार भी हैं या नहीं है। तो ये बड़ा एक चिंतित करने वाला प्रश्न है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन शायद वो सेलिब्रेशन के रूप में ही मनकर रह जाता है। अब ये जो एक महीने से भी ज्यादा का जो एक प्रयास चल रहा है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम स्टूडेंट्स को ये जानकारी प्रदान कर पा रहे हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, केवल 15 अगस्त पे ध्वजारोहण करना या 26 जनवरी को वंदे मातरम का गुणगान कर लेना केवल यही वास्तविक स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन नहीं है या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नहीं है। सबसे जो चिंतित विषय जो आजकल नजर आता है कि बच्चों में जो बच्चों के जो मूल्य हैं, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में है या राष्ट्रीयता के बारे में है, वो सब कहीं ना कहीं आज हीन होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब ऐसे में इसी एक ऐसे मिशन के साथ आना जहां सारे शहर के स्कूलों को जोड़ लेना और फिर बच्चों को ये जानकारी प्रदान करना, तो अपने आप में एक सराहनीय पहल है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं और वो यहां से प्राप्त जानकारी को स्कूल के बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी शेयर करें कि उनका भी जो ज्ञान है वास्तविक स्वतंत्रता को लेकर, हमारी अखंडता को लेकर, भारत की अखंडता को लेकर, तो वो भी उसके प्रति जागरूक बने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं रेखा जी ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे अखंड भारत का ये स्वतंत्रता दिवस जो कि 21 अक्टूबर को मनाना जाना चाहिए, यह हम मनाते भी हैं, लेकिन क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव है, बच्चों में जानकारी का अभाव है, तो इसके चलते हमारा तो ये मानना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहां पर एजुकेशन प्रदान की जाती है वहां पर कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी दिया जाए जहां पर बच्चों को ऐतिहासिक चीजों के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में, यहां के संस्कार के बारे में और सबसे स्पेशली सच्चे इतिहास के बारे में जानकारी हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: देखिए, जो आजकल सबसे बड़ा चिंता का विषय है, आजकल का जो यूथ है वो अपने मिशन से, अपने मूल्यों से भटका हुआ है
1: जी।
0: आजकल हर अपनी जिद को पूरा करना आप कह लीजिए या अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बड़ा आसान तरीका बनाया हुआ है, धरना दे दीजिए और वायलेंट तरीके से प्रदर्शन कर लीजिए और कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हो जाती है सरेंडर करने के लिए, चाहे वो जायज है या नहीं है। तो ऐसे में बच्चों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। और जब सुबह की जो हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, यदि हम उसमें एक रेगुलर थीम इस तरीके की डाल दें कि हमें रोज हम अपने देश के बारे में बच्चों से बात करें, अपने शहर के बारे में बात करें, बच्चों को नहीं पता हमारे महापौर कौन है, बच्चों को नहीं पता हमारे विधायक कौन है, क्योंकि उनसे कभी इस बारे में बात नहीं होती। ये बात होती है केवल जब कोई पर्व आता है या कोई सेलिब्रेशन करना होता है स्कूल में, तो वो सूक्ष्म जानकारी उनको दे दी जाती है। तो ये उनके एक रेगुलर असेंबली का हिस्सा हो सकता है जिससे वो इन तथ्यों से जुड़े रहें, उनका रिकॉल किया जाना चाहिए जिससे कि वो उनके प्रतिदिन दैनिक जीवन का हिस्सा बने और उन्हें देश के बारे में, अपने शहर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो और वो ऐसी जानकारी नहीं हो कि हमने आज सुनी और कल खत्म हो जाए। इट शुड बी इम्बाइब इन देयर पर्सनालिटी एंड देयर कैरेक्टर। तो दैट शुड बी थ्रू मॉर्निंग असेंबलीज, थ्रू सर्टेन एक्टिविटीज, जहां हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि बच्चों को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में हम उनको जानकारी दें कि कैसे एक विकसित भारत में हम कैसे, हमारा क्या, हमारी एज अ स्टूडेंट क्या जिम्मेदारी
1: क्या जिम्मेदारी।
0: तो उसके लिए प्रयासरत है विद्यालय और हम प्रतिदिन अपना ऐसा प्रयास करते हैं कि बच्चों में इस तरीके की जो भावना है वो विकसित की जा सके।
1: तो रेखा जी, आगामी जो कार्यक्रम है जो महारैली सुभारती विश्वविद्यालय आयोजित करने जा रहा है, इसमें आपके स्कूल में क्या तैयारियां चल रही हैं, बच्चों में क्या उत्साह है, क्या जोश है इसके बारे में?
0: बच्चों में उत्साह है क्योंकि उन्हें एक इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला और एक जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जब बच्चों को ये पता है कि शहर के बड़े बड़े स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मिलना और फिर एक प्रतिस्पर्धा के साथ उसके लिए तैयारी करना, तो बच्चों में इसको लेकर एक उत्साह है और वो जिज्ञासु है ये सब जानने के लिए कि क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज एक्टिविटीज।
1: जी, तो रेखा जी, जैसा कि आज का सिनेरियो है, यहाँ पर बच्चा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रहा है या मैं कहूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे का जो विवेक है डिसीजन मेकिंग का वो बहुत ज्यादा ऑल ऑफ सडन हो गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम किस तरीके से बच्चे को ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो ऑल ऑफ सडन डिसीजन मेकिंग ना करे या किसी भी चीज को बिना किसी ऑथेंटिकेशन के माने ना, क्योंकि

0: ऐसे में बच्चा अपने लक्ष्य से भटक तो रहा ही है, और हमारे लिए एज ए एजुकेटर, एज अ इतने बड़े सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या जो हमारे गार्जियन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने अपब्रिंगिंग में कुछ इन चीजों को इंक्लूड करें, ताकि आपका भी सहयोग हो सके और बच्चे का जो चरित्र निर्माण है वो भी बेहतर हो सके?
1: देखिए, जो अभिभावक स्टूडेंट और स्कूल का जो रिलेशन है वो थ्री टायर है।
0: Yes.
1: अगर आप किसी एक को भी कमजोर कर देंगे या इग्नोर कर देंगे तो ओनली द स्टूडेंट वुड बी सफरिंग।
0: यस,
1: सो वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। बीइंग पेरेंट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स दैट दे शुड गिव क्वालिटी टाइम टू देयर चिल्ड्रन, रादर देन, बिकॉज वी नो दैट एवरीबॉडी इज बिजी, बट इट डजंट मीन दैट वॉट एवर यू आर वर्किंग, whatever you are earning, it is for your kids only.
0: Yes.
1: And if you are not giving your quality time to them, so it, this money doesn't make any sense.
0: Yes.
1: अगर आपका बच्चा misleaded है, अगर आपका बच्चा divert है, अगर उसके बच्चे को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी जिम्मेदारी अभिभावक की भी होती है, स्कूल की भी होती है, और वो तभी संभव है जब पेरेंट्स अपना क्वालिटी टाइम बच्चे को दें, उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी जिज्ञासा को शांत करें।
0: Yes.
1: सेम इज कंसिडर्ड विद द स्कूल एज वेल।
0: यस,
1: यदि बच्चे के मन में कोई भी जिज्ञासा है या बच्चे की कोई प्रॉब्लम हम ट्रेस आउट कर पा रहे हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है बच्चा तो मुझे उसे इग्नोर नहीं करना, मुझे उस बच्चे से बात करनी है। काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग स्कूल्स में कंपल्सरी कर दी गई है।
0: Yes.
1: इन्हीं सब चीजों को लेते हुए कि बच्चों को चैनलाइज रखा जाए। अगर बच्चे हाइपर एनर्जेटिक हैं तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए
0: जी।
1: जो तब तक संभव नहीं है जब तक अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी, जब तक वो तीनों मिलके उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उस जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं बच्चे और अभिभावक का ही है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी सावधानी से और बच्चे की जरूरतों को, आवश्यकताओं को समझते हुए, उनके विजन को पढ़ते हुए उनको गाइड करना है। Every time a parent or a teacher cannot impose.
0: Yes.
1: We need to involve the student in the process.
0: Yes.
1: To make him understand that whatever decision is being taken by the school or by the parent, that is good only for him.
0: Yes.
1: If you will instruct, the child will not listen. If you will involve him, the child will definitely follow you.
0: Yes.
1: So my suggestion is ki bachcho ke na to bilkul dost ban jaye, na hi bilkul unse ek kinara kar le. Ek mediocre path hame banana hai jispe hum milkar bachche ka एक संपूर्ण विकास कर सके और उसे अच्छे और बुरे को जज करने के लिए उस बच्चे को हम तैयार कर सके कि वो गलती से या रैंडम कोई डिसीजंस ना ले, पीयर प्रेशर में ना आए।
0: Yes.
1: जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है।
0: हाँ.
1: क्योंकि उनके हिसाब से या तो गूगल बाबा सब कुछ है या उनके दोस्त सबसे अच्छे वैल्यूशियर है।
0: Yes.
1: तो वो जो थिन लाइन है इन सबके बीच में, हमें उसको स्टडी करना होगा और अपने बच्चों को के समग्र विकास के लिए, उनका मानसिक बौद्धिक विकास करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना। तो यही मेरा जो संदेश है अभिभावक के लिए कि उन्हें अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी समस्याओं पर को सुनना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा रेखा जी। और मेरा भी यही मानना है कि इसमें पेरेंट, एक टीचर और एक विद्यार्थी, तीनों की उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है जितनी कि हम सोचते हैं कि सिर्फ एक एंड से ही सब कुछ हो जाए। वो बिल्कुल उससे काम नहीं बनेगा, आपके बच्चे का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपको बताऊं, 21 अक्टूबर 2026 को जो आगामी है अभी, उस दिन सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम कुछ ऐसे मूल्यों पर काम कर रहे हैं जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास शामिल है, जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार या राष्ट्रीयता। इन सभी मूल्यों को हम साथ में लेकर के बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए परस्पर है और तैयार है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं, और मैं यही कहूंगी कि आप भी इस आगामी रैली में अपना योगदान दें, अपना कीमती वक्त दें। जय हिंद, धन्यवाद।

मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर

है। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और यह ऋषि आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है, और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

93.0 FM। हेलो आर्यवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आर्यवंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग। आँखों में

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आपसे बहुत साल पहले एक साइंस फिक्शन मूवी आई थी, हमने भी अपने बचपन में देखी। उसका नाम था मिस्टर इंडिया। पहले ये छोटा सा डायलॉग सुनते हैं, आपकी यादें ताजा हो जाएंगी।
1: जो भी ये गैजेट अपनी कलाई पर बांध कर उसका बटन ऑन करेगा, वो दिखाई नहीं देगा। ऐसी हालत में इंसान को सिर्फ लाल रोशनी में या लाल शीशे के जरिए देखा जा सकता है। लाल रंग पर इस गैजेट का कोई असर नहीं होता। इस गैजेट का स्विच ऑन करते ही इंसान पूरी तरह इनविजिबल हो जाएगा और दुनिया की कोई भी आंख उसे नहीं देख सकेगी।
0: और फिर ये घड़ी या ये गैजेट मिल जाता है फिल्म के हीरो अनिल कपूर जी को, और उसके बाद तो हम सबको याद है, हिस्ट्री है ये पूरी की पूरी फिल्म।
2: मैं तो आईने में भी दिखाई नहीं दे रहा।
3: अरे अरे अरे अरुण भाई, आप वापस आ गए।
2: मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, ये देख, मैं फिर दिखाई दे रहा हूँ। वापस जाओ।
0: जी हाँ, तो मिस्टर इंडिया फिल्म से अभी आपने ये डायलॉग सुना। और आज मैं साइंस फिक्शन मूवी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैंने ये आपको सुनाया, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने इसी स्पेशल कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं हमारे जो होस्ट होते हैं, हमारे आदरणीय आरपी सिंह सर का। सर, आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो स्पेशल टॉपिक आज आपने चूज किया है, इसके पीछे क्या कारण है। सर,
4: जय हिंद कृष्णा, और सभी श्रोताओं को एक बार फिर जय हिंद।
0: सर,
4: ये कार्यक्रम फिक्स करने का कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं था
0: जी,
4: लेकिन मुझे कुछ जो यंग लोग हैं वो मिले, और दिल्ली की एक ऐसी जगह मिले जहां सभी जर्नलिस्ट आते हैं
0: जी,
4: तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं यारे, सबसे पहली साइंस फिक्शन तो जो थी वो मिस्टर इंडिया थी। लेकिन उस समय मैं ज्यादा नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे एज के वहां कम लोग थे, और मैंने कहा कि चलो ठीक है। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि एक और फिल्म थी जिसमें कि ये बातें हुई थी, और वो शायद मेरे समझ में जिसको हम कहते हैं वो सबसे पहली साइंस फिक्शन थी
0: जी,
4: वो थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।
0: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे,
4: और मिस्टर एक्स इन बॉम्बे कहते ही जो आज की जनरेशन है उसको भी एक गाना याद आ गया होगा। वो क्या था गाना, जरा सुना के बता। देखो
0: जी हाँ दोस्तों, किशोर दा की आवाज में वो खूबसूरत गाना, खूबसूरत हसीना, जाने जिगर जाने मन।

0: तो वो जो गाना था उसमें एक और भी चीज, इसमें तो अनिल कपूर गायब हो रहे हैं अपने घड़ी के गैजेट के साथ, लेकिन उसमें पूरी कार जो है वो चलते चलते ऊपर चली जाती
1: जी,
0: करीब 12-13-14 फीट ऊपर चली जाती थी। वो भी एक साइंस फिक्शन था
1: जी।
0: और अगर देखा जाए तो उसके ये जो गाने जितने थे, खैर मैं ये कहूंगा कि पहले जमाने की हर फिल्म में ओके गाने ही में ही दम होता था
1: जी,
0: ना उसमें सेक्स होता था ना उसमें कोई न्यूडिटी होती थी।
1: हाँ।
0: उसके गानों में ही दम होता था
1: जी।
0: तो हर आदमी ये कोशिश करता था, हर प्रोड्यूसर ये कोशिश करता था कि अच्छे से अच्छे गाने सुनाए जाएं,
1: ज्यादा से ज्यादा बढ़िया अच्छे गाने होते
0: अच्छे गाने सुनाए जाएं, जिससे कि लोगों को उसका एंटरटेनमेंट मिले
1: जी।
0: तो उसी उसमें मैंने सोचा कि आज तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गाना एक बार सुनाओ सबको, और फिर मैं बताऊंगा कि ये गाना कैसे बना
1: जी। आइए दोस्तों सुनते हैं यही सुपरहिट गाना किशोरदा की आवाज में, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: तो स्वागत है आपका। ये है मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंदी रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये खूबसूरत तराना आपने सुना। और तो सर, मैं चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को बताएं कि इतना खूबसूरत गीत तो हमने उनको सुना दिया, आज हम किस विषय में, किसके बारे में बात करने वाले हैं?
1: ये तुमने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हम लोग किशोर कुमार के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं।
0: जी सर।
1: लेकिन एक ऐसी हीरोइन थी जिनका कि मतलब अगर देखा जाए तो हिंदी मूवी में और भोजपुरी मूवी दोनों में उनकी पिक्चरें हिट हुई।
0: जी।
1: और भोजपुरी में तो उनकी पिक्चरें इतनी हिट हुई
0: जी
1: कि एक टाइम ऐसा आया कि ऐसा लगा कि कुमकुम को लोग अब भोजपुरी हीरोइन कहने लगेंगे। हुआ भी बाद में यही, लेकिन उस समय ऐसा लगा था कि ये भोजपुरी हीरोइन है कुमकुम। वैसे तो इनका जन्म वगैरह सब कुछ एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और इन्होंने 1963 में
0: जी
1: एक भोजपुरी फिल्म थी, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई में,
0: जी
1: 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। टॉप क्लास के सॉन्ग थे
0: जी
1: और टॉप क्लास की फिल्म थी। उसका एक गाना था, गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो सैया से कर दे मिलनवा हो आए राम।

0: ये गाना आज तो हो सकता है कि लोग ये सोचे कि ये हिंदी गानों में या भोजपुरी गाना, लेकिन वो भोजपुरी भी नहीं था, इसमें ऐसी कोई भोजपुरी नहीं थी जो कि लोग ना समझे, लेकिन वो गाना आज भी बहुत फेमस है। और कुमकुम का बचपन का नाम जैबुनिस्सा था,
1: जैबुनिस्सा,
0: हाँ, लेकिन बाद में कुमकुम इनका नाम रखा गया
1: जी।
0: और यहाँ से कुमकुम फेमस हुई और फिर एक बार फेमस हुई तो चलती रही। तो ये गाना सुनाया जा सकता है
1: जी? बिल्कुल, आइए दोस्तों सुनते हैं यहाँ पर ये सुपर हिट तराना, सिर्फ आपके अपने सुबह आजाद हिंद रेडियो पर।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे आदरणीय आरपी सिंह सर जी भी हैं और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुराने जमाने की फेमस मशहूर अभिनेत्री कुमकुम के बारे में। जैसे कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि जैबुनिसा उनका जन्म का नाम था, हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की वो एक फेमस हीरोइन थी। सर, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ और बताएं।
8: कृष्णा, देखिए बात एक है कि अब उस समय इतना ज्यादा किसी के बारे में लिखा नहीं गया
7: जी।
8: उस समय के जो जर्नलिस्ट थे वो फिल्मों के बारे में एक अलग ही एक ट्रेड था और उसमें वो लिखते थे। लेकिन फिर भी कुमकुम के बारे में जिसने लिखा उसने कोई बहुत कभी एडवर्स कमेंट नहीं लिखे। बहुत ही सोवर और बहुत ही मतलब पारिवारिक फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन थी
7: जी।
8: उसी में एक फिल्म आई थी जो मुझे एकदम से याद आती है, वो भी फिल्म किशोर कुमार के साथ थी।
7: अच्छा।
8: जिसमें कि कई गानों के साथ साथ एक गाना बहुत ही फेमस था
7: जी,
8: और वो था हमारे संग संग चले गंगा की लहरें।
7: हाँ, बहुत ही सुपर हिट गाना।
8: सुपर हिट गाना।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये खूबसूरत कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं पुराने जमाने की, हमारी फिल्मों की, हमारे पुराने जो रेट्रो हिट्स गाने थे या सिंगर्स थे या अभिनेता और अभिनेत्री। ऐसे ही आज आदरणीय आरपी सिंह सर हमको बता रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम के बारे में, जिनके बारे में सर जैसा कि आपने बताया कि वो अभिनेत्री तो हिंदी फिल्मों की ही थी, लेकिन क्योंकि भोजपुरी फिल्में और उसके गाने इतने हिट हो गए तो कई बार लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये भोजपुरी अभिनेत्री हो गई हैं।
1: वैसे तो सच बात यह है कि वो कई फिल्मों में बहुत ज्यादा फेमस हुए
0: जी।
1: अब जैसे एक और भी एक मेरे मैं थोड़ा सा भूल गया था, अब मुझे एकदम से याद आया
0: जी
1: कि जहां पे ये गाड़ी उड़ती थी
0: जी
1: वहां पे ही एक और भी इसका साइंस का था कि किशोर कुमार ने एक दवाई खाई
0: जी
1: और उसको खाने के बाद वो गायब हो गया।
0: अच्छा।
1: और उसकी मदर जो है वो रोए, उसके सारे लोग रोए, लेकिन उसका ये था कि एक एक शीशी थी जिसमें की दवाई थी, जो वो एक बार खा ले तो वो गायब हो जाए, दूसरी शीशी से दवाई खा ले तो वापस आ जाए। तो इस तरह के मजेदार बातें होती थी। अच्छा, उस समय लोगों का जो दिमाग था वो ऐसा उल्टा सीधा नहीं चलता था कि ये तो हम भी कर लेंगे, ये तो वो भी कर लेगा, लेकिन हाँ एंजॉय सब करते थे। और उसी के साथ साथ अब हम एक और भी बड़ी अच्छी एक गाना था उस समय
0: जी,
1: छेड़ो ना मेरी जुल्फें सब लोग क्या कहेंगे
0: जी,
1: और ये भी कुमकुम के ऊपर ही था। गजब का गाना था और गजब की इसकी बिनाका गीतमाला वगैरह हर जगह ये गाना इतना ज्यादा चला था कि सब गानों की इसने कमर तोड़ के रख दी थी। तो ये गाना अगर सुना सकते हैं तो सुनाए, क्यों पुराना है, निकाल तो लोगे ही।
0: बिल्कुल सर, आइए दोस्तों आपको सुनाते हैं उस जमाने का सबसे सुपर डुपर हिट गीत सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। और मेरे साथ स्टूडियो में हमारे आदरणीय आरपी सिंह सर भी बैठे हैं और आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम के बारे में, पुराने जमाने की, बीते दौर की वो मशहूर अभिनेत्री जिनका नाम शायद आज हम लोग नहीं जानते लेकिन उनके गाने, उनकी अदाकारी आज भी हम सबके बीच में है। और जब कोई फेमस गाना आपको बताते हैं तो अचानक आपको भी याद आ जाता है कि कभी ना कभी आपने इस गाने को देखा और सुना जरूर होगा, क्यों सर?
1: हाँ जरूर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बार मेरा एक इत्तेफाक की बात है।
0: जी सर,
1: कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ
0: जी,
1: और हमारे साथ एक हमारी कलीग हुआ करती थी
0: जी,
1: वो कुमकुम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो बॉम्बे से रह के आई थी। तो वो दो बार ऐसा हुआ कि कुमकुम उनसे मिलने आई।
0: अच्छा,
1: बीएचयू में
0: जी।
1: अब वो दौर मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं और कुछ नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी में उस समय ये बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। लेकिन अच्छा, ऐसा सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं था कि कोई लिख दे कि आज कुमकुम आ रही है। लेकिन मेरे समझ में कुमकुम करीब दो घंटा रही कैंटीन में हम लोगों के साथ बैठे हुए
0: जी,
1: उतनी देर में कैंटीन का सब सामान बिक गया।
0: अच्छा, इतनी भीड़ वहां,
1: इतनी भीड़ हो गई और फिर उठ के उसको जाना पड़ा। तो ऐसी हीरोइनों का वो दौर था जबकि कोई ग्लैमर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन एक खूबसूरती होती है
0: जी,
1: और दूसरा उस हीरोइन की एक अपनी अदाएं होती हैं
0: जी,
1: जिसको कि देखने लोग गाते आते थे
0: जी।
1: अब सब लोगों के दिमाग में ये ना आए कि मैं तो खाली भोजपुरी फिल्म की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: तो यहाँ पे हम मदर इंडिया का जिक्र करेंगे
0: जी,
1: जिसमें कि वो कुमकुम
0: जी
1: ने गाना गाया राजेंद्र कुमार के साथ
0: जी,
1: वो सुना दो।
0: आइए दोस्तों, मदर इंडिया फिल्म से कुमकुम जी के ऊपर आधारित ये गाना सुनते हैं, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एसपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर भी हमारे साथ में, और आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम के बारे में। पुराने जमाने की ये अभिनेत्री, जो कि मूल रूप से इनका नाम था जैबुनिसा, और ये जब बॉम्बे आ गई थी उस जमाने में, उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया लगभग 1954 के आसपास से, और बहुत सी फिल्में जो कुछ गाने भी हमने आपको सुनाए भी, उनमें काम किया। आपने भी इनकी कोई फिल्म कभी पर्दे पर जाकर देखी थी?
1: उस समय कोई टेलीविजन तो था नहीं
0: जी,
1: तो जितनी फिल्में अगर कोई देखने के लिए करता था
0: जी,
1: तो वो तो जाके उसको सिनेमा हॉल में ही देखना पड़ता था। और हम लोगों के साथ एक और भी बात थी
0: जी,
1: कि हमारे घर से इस चीज की कोई वो नहीं मिलती थी परमिशन।
0: अच्छा।
1: तो धीरे धीरे जो पैसे इकट्ठे किए जाते थे, जैसे उस समय चौनी अठन्नी चलती थी,
0: हाँ सर,
1: ये सब इकट्ठा करके एक रुपया दो रुपया हो गया तो चलो आज पिक्चर देख के आते हैं, तो इस तरह से हम लोग पिक्चर देखने जाते थे
0: जी।
1: अब वाला वो जमाना गया कि 300 रुपए में टिकट खरीदना है,
0: हाँ,
1: और एडवांस बुकिंग करानी है, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस समय जो दौर था वो यही था। और आज जो लोगों को खुशी मिलती है उसकी शायद 200% खुशी उस समय मिलती थी, जब 10 पैसा 15 पैसा चवन्नी अठन्नी जमा करके
0: जी,
1: और वो फिल्में देखते थे। लेकिन अब पुरानी यादें हैं, तो भाई ये यादों का ही तो तुम्हारा प्रोग्राम है, तो हम इसको जाने। एक और गाना था
0: जी,
1: कुमकुम ने मेरे समझ में हर एक बड़े हीरो के साथ काम किया। एक फिल्म आई थी जिसमें कि राजकुमार भी थे, और जितने उस समय के टॉप हीरो थे सब थे, और उसका एक गाना था तेरा जलवा जिसने देखा, वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, तू मेरा हो गया। देखो
0: आइए दोस्तों, सुनते यही गाना सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्ण और मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर भी हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम के बारे में। जैसे आपने बहुत सी पुरानी हीरो या हीरोइनों के बारे में सुना ही होगा, टुनटुन भी एक अभिनेत्री थी, लेकिन ये कुमकुम अभिनेत्री।

0: और इनके तकरीबन सभी गाने सुपर डुपर हिट होते थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया और आज इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत ऐसी फिल्म मदर इंडिया के बारे में बात की, प्यासा फिल्म में भी ये थी सर, तो प्यासा फिल्म भी बहुत सुपरहिट फिल्म रही है।
1: अब ये है कि हमने दो तीन तो हिंदी गाने सुन लिए
0: जी,
1: तो हिंदी और भोजपुरी में कोई बहुत फर्क नहीं है
0: जी,
1: ये खाली एक अपना मन का वो है। एक और फिल्म आई
0: जी
1: जिसमें कि एक गाना था लाले लाले होटवा पे बरसे लाला लैया की रस चुएला, इस आज भी इस फिल्म का गाना और ये गाना
0: जी
1: इतना फेमस है कि इतना ज्यादा सुना जाता है कि जितना हिट होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आज हिट हुआ है।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं यही सुपरहिट गाना सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: शंकर का है?
1: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
0: पुल पे? वहाँ अकेला क्या करे?
2: एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। और कुमकुम अभिनेत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, उनके तकरीबन सभी गाने सुपरहिट थे और उस दौर के तकरीबन हर बड़े स्टार के साथ या हीरो के साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया। 1954 से 1977 तक लगभग उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने शादी भी की थी, उनके बच्चे भी थे।
3: जो अभी उजाला फिल्म की बात हो रही थी
2: जी,
3: उसके साथ एक और भी गाना था
2: जी,
3: उसका वो गाना भी बहुत ज्यादा फेमस था, चली रे गोरी पनिया भरन को। और ये गाना भी लोगों को इतना ज्यादा हिट हुआ कि इसके उस समय रिकॉर्ड बिकते थे
2: जी, कैसेट बिल्कुल,
3: कैसेट नहीं रिकॉर्ड।
2: अच्छा, वो बड़े गोल वाले,
3: गोल वाले काले
2: जी,
3: काले
2: जी सर।
3: इसके हर एक रिकॉर्ड इतना तगड़ा ब्रेक हुआ कि लोगों ने इसका लोहा मान लिया।
2: अच्छा
3: अच्छा, उस समय बाद में रिकॉर्ड आए LP, जिसमें कि एक रिकॉर्ड में पूरे गाने आ जाते थे, पूरी फिल्म के गाने आ जाते थे
2: जी
3: अमूमन। लेकिन पहले जमाने में इस समय तक ऐसा भी था कि एक गाना एक रिकॉर्ड होता था 78 RPM का। तो उस समय इतने रिकॉर्ड इसके बिके थे कि लोग सोचते थे कि यार ये क्या हो गया, इस गाने में क्या रखा है। लेकिन रखा है तभी तो बिक रहा था
2: जी।
3: तो ये गाना अगर हो तो बहुत ही अच्छा है।
2: आइए दोस्तों, ढूंढते हैं इस गाने को और सुनाते हैं आपको आपकी अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूं वास्तु कृष्णा और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहां पर अभिनेत्री कुमकुम जी के बारे में और बहुत ही फेमस मशहूर वो रही अपने जमाने में। और हम तो इस कार्यक्रम में बात ही उन लोगों की करते हैं जिन्होंने अपने टाइम पर बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छे गाने भी दिए। तो अभिनेत्री कुमकुम के कुछ और सुपरहिट गाने हैं,
1: लेकिन एक जो अभी जिसपे हम लोग बात कर रहे थे वो गाना है बनवारी ओ हमरा के बलमा हमारा
0: जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यही पुराने इस जमाने का बीते दौर का खूबसूरत तराना सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर।

जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो। अभिनेत्री कुमकुम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ आदरणीय आरपी सिंह सर भी हैं और उनके गाने और बीते दौर की बातें वो हमको बता रहे हैं। देखिए, कुछ गाने तो आपने भी बहुत सुने होंगे और कुछ गाने जब आप सुनते हैं इस कार्यक्रम में तो आपको अचानक से याद आता है, ये तो हमने बहुत सुना है बचपन में।

0: मेरे समझ में कृष्णा आप बहुत गाने तो हम लोगों ने सुना दिए
1: जी।
0: गाने की अगर लिस्ट देखी जाए तो उस समय फिल्मों में एक एक फिल्मों में आठ आठ नौ नौ गाने होते थे
1: जी।
0: लेकिन हम लोग अपना अपने इस प्रोग्राम में
1: जी
0: लोगों को एंटरटेन करें तो ज्यादा अच्छा है
1: जी।
0: नहीं तो गाने तो हम लोग बहुत से सुना सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे ले जा करके हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करें।
1: ठीक सर।
0: वो था मिस्टर एक्स इन इंडिया
1: जी।
0: मिस्टर एक्स इन इंडिया में एक बार तो वो गाना किशोर कुमार ने गाया और एक बार वो कुमकुम ने गाया।
1: अच्छा।
0: तो अब जो कुमकुम की आवाज में था
1: वो गाना
0: हम सुना के और फिर हम बोलते हैं जयन, लेकिन पहले गाना सुनाओ
1: जी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं यहाँ पर अभिनेत्री कुमकुम जी पर आधारित ये तराना।

तो दोस्तों ये है मेरठ का नंबर वन सुबह भारती आजादी हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्ण, मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह सर जी हैं और आज हमने बात की यहाँ पर अभिनेत्री कुमकुम के बारे में। अगर आप किसी और ऐसी अभिनेत्री के बारे में, किसी अभिनेता के बारे में, कुछ पुराने तरानों या किसी सिंगर के बारे में जानना चाहते हैं, आप चाहते हो उनको शामिल किया जाए, तो हमारा नंबर है 9639012111।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के

0: ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है आपका राष्ट्रीय चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखने वाले परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको नारा देते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का। हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, पहले हमें अपने देश के प्रति सोचना है। सबसे प्रथम देश आना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा हम सभी के भीतर होना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों यही है कि हम सभी के भीतर देश के प्रति चेतना जागृत हो। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में, जैसे अहिंसा। गांधी जी ने कहा था कि यदि आपके गाल पर कोई एक चांटा मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दे, वो दूसरे गाल पर भी चांटा मार दे तो उसके बाद पुनः पहला गाल उसके सामने कर दे। ऐसा आप तब तक करते रहें जब तक कि वो व्यक्ति थक न जाए। इसी सिद्धांत के कारण उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर की जा रही हिंसा का प्रतिकार करने के लिए या अपने को बचाने के लिए हिंसा के प्रयोग को सही नहीं माना। गांधी जी का ये उपदेश महात्माओं के लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठकर है, आम जन के लिए नहीं। सही उपदेश है कि आप अहिंसा का सम्यक प्रयोग ही करें, अन्यथा आपके अस्तित्व के लिए ये हितकर नहीं होगा। आत्मरक्षा के लिए अहिंसा के सिद्धांत को त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए।

तथागत बुद्ध की अहिंसा सम्यक अहिंसा है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी ओर से कोई हिंसक कार्यवाही न करें, परंतु आपको आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। यदि कोई आपके प्रति हिंसा करे तो आपको अपनी सुरक्षा हेतु जितनी भी हिंसा की आवश्यकता हो आप कर सकते हैं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए ही उन्होंने भिक्षु संघ में सैनिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया था। एवं एक समय विदुड़ब को भी कपिलवस्तु पर आक्रमण करने से नहीं रोका। कुछ बौद्ध शासकों के द्वारा तथागत बुद्ध की शिक्षा को सही नहीं समझकर अपनी सेना को अहिंसा का पाठ पढ़ाना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ।

इसमें मुख्य रूप से यदि सम्राट अशोक एवं सम्राट बृहद्रथ का इतिहास पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। मूल मंत्र। वर्तमान में हमारा मूल मंत्र वो होना चाहिए जो सनातन रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा दिया गया था। देव शिवा वर मोहे ई है, शुभ कर्मन्ते कबु न टरो, न डरो असी सो जब जाए लड़ो, निश्चित कर अपनी जीत करो। उपयुक्त मंत्र का अर्थ होता है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वर दें मैं अच्छे काम करने से कभी पीछे न रहूं, मैं डरू नहीं, जब अपने शत्रु से लड़ूं तो मैं अपनी जीत सुनिश्चित करूं। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में। जय हिंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज मैं आपको सुनाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल वॉइस, जब उन्होंने टोक्यो से अपने रेडियो पर, जी हाँ दोस्तों, नेताजी का जो रेडियो था उसका नाम उन्होंने रखा था आजाद हिंद रेडियो। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए, उन्हीं के विजन को आगे लेकर बढ़ने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय ने अपने रेडियो का नाम रखा है आजाद हिंद रेडियो। हम नेताजी के सपने को साकार करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में हमेशा देशभक्ति की और क्रांतिकारियों की बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने रेडियो के प्रसारण में टोक्यो से क्या बोला।
1: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोक्यो। कंट्रीमैन एंड फ्रेंड्स, इन अप्रैल लास्ट यू हर्ड माय वॉइस ओवर अनदर रेडियो इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आई एम इन टोक्यो एंड आई एम एक्सेप्टिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हियर इन ऑर्डर टू स्पीक टू यू अगेन। सिंस आई स्पोक टू यू लास्ट, नो इम्पोर्टेंट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द जनरल वॉर सिचुएशन।
0: आजाद हिंद जिंदाबाद। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो, और एक और हिस्सा एक भाषण का सुनाता हूँ आपको। नेताजी की इस आवाज को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो बोलिएगा जय हिंद।
2: जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
3: पर आपने यहाँ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कैसे लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा।
0: ये तालियों की गड़गड़ाहट जो अभी आपने सुनी, उस समय पर क्या माहौल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ आपके साथ वास्तु कृष्णा। जय हिंद।

0: नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ।
0: लाखों लोग हैं, युवा हैं, जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अभी?
1: नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए।
0: जी।
1: और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ। तो आदमी जो है, आदमी कितने वर्ष का है इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है और मैं पूरी तरह से युवा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक,
0: जी
1: कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मैं, मुझे समाज ने बहुत दिया, मुझे इस देश ने बहुत दिया,
0: जी
1: जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ
0: जी,
1: वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है
0: जी सर,
1: और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक का रखा हुआ है
0: जी,
1: कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ
0: जी। एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है और आपके नाम से भी मेल खाता है सर। ये तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर, आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है?
1: मेरा तो जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है
0: जी,
1: लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मैं, मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारे ये सोच है ये जगह जगह फैले। जिसके पास पैसा हो तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहां तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यही हमारा स्लोगन है कि हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा
0: होना ही चाहिए,
1: लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या सवाल है
0: जी।
1: तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो यही मेरा सोच है
0: जी, जी।
1: कि हमको आजादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आजादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली। और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा? तो आजाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार आजाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूं जय हिंद आजाद हिंद रेडियो।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक

0: उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत आप सभी का राष्ट्र चेतना में।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। कि शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्य

भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गर रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड।

0: इठोर जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और इस वक्त आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें करेंगे आगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। ये दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो दुनिया भर की बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना। ये दिन बाल विवाह, शिक्षा में असमानता, हिंसा और भेदभाव जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आप इस दिवस के बारे में कुछ खास जानकारी रखते हैं तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शेपंकज और इस वक्त आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर। इसके महत्व के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात आती है जागरूकता को बढ़ाना। ये दिन वैश्विक स्तर पर लड़कियों के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं जैसे कि खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा और हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट आता है सशक्तिकरण। ये लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है और उन्हें भविष्य की नेता, इनोवेटर और चेंज मेकर बनाने के लिए सशक्त बनाने पर जोर देता है। तीसरा, निवेश। लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये दिन इस विचार को रेखांकित करता है कि लड़कियों को सशक्त बनाना केवल न्याय का नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक बुद्धिमान निवेश है। आपको मैं बताता चलूं, हमारे भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है जो देश की बालिकाओं को समर्पित होता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM से मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। आगामी 21 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिसे आयोजित किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की ओर से, और इसमें अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं हमारे आदरणीय फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। और आज अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करने के लिए, कुछ अच्छी कविताएं सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रख्यात कवि सुमनेश सुमन जी। सर, स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार, मैं सुमनेश सुमन आप सबको प्रणाम करता हूं आपके रेडियो के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना से ही और उससे पहले से ही, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़ा वयस्क हुए, युवा हुए, तो उन्होंने देश के बारे में सोचा और देश में देखा कि ये हमारा देश ही नहीं है, हमारे देश का किसी दूसरे लोगों का राज है। पिछले कई सौ वर्ष दूसरे गुलाम भी रही पर अंग्रेजों की गुलामी चल रही थी, तो उन्होंने एक इस प्रकार से आंदोलन शुरू किया। जहां मैं पहली बात कहना चाहूंगी, 21 अक्टूबर से पहली के उन्होंने ये सोचा कि इस देश के हर नागरिक को यह पता हो जाना चाहिए कि हम देश में आजादी का आंदोलन हमारे देश में प्रारंभ हो चुका है। कोई भी आदमी बाद में ये ना कहे कि हमें पता ही नहीं था कि आजादी का आंदोलन चल रहा है। उन्होंने इस तरह के नारे दिए कि कोई भी आदमी हो, वो हर आदमी को इस युद्ध में, इस आंदोलन में भाग लेना होगा, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना होगा। वो अगर बिल्कुल मोर्चे पर ना रह सके तो उसके पीछे ना रह सके तीसरी लाइन में रहे, लेकिन कोई भी कहीं भी रहे, अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, सीमा पर नहीं जा सकता है, युद्ध में नहीं खड़ा हो सकता है, भाग नहीं ले सकता है, तो कम से कम लोगों में जन जागरण करे कि हमारा देश, हमारे देश की आजादी का आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। हम सब नेताजी को नमन करते हैं। आज तो मीडिया का जमाना है, संप्रेषणीयता का जमाना है, तब तो मीडिया भी नहीं था। उन दिनों 1945 से पहले ही वो देश नहीं दुनिया भर में इतने लोकप्रिय हो गए थे, ऐसा कोई उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा कोई दूसरा क्रांतिकारी किसी देश में हुआ ही नहीं, जैसे नेताजी को मानने लगे थे। और सारा देश नहीं, दुनिया भर के लोग, देशवासी लोग भी और जो राष्ट्रवादी लोग थे, किसी भी देश के थे, वो नेताजी को एक आदर्श मानने लगे थे। हम प्रणाम करते हैं वो 21 अक्टूबर के लिए, उनको जो अखंड भारत का उनका सपना था, जहाँ उन्होंने शपथ ली, जहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया, और तब से उन्होंने नारा लगाया कि अब देश हमारा आजाद हो चुका है, एक युद्ध बाकी है, युद्ध चल रहा है। मैं आपके इस कार्य को भी, डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के इस बहुत बड़े मिशन को प्रणाम करता हूँ, और हम सब साथ हैं 21 अक्टूबर को, और हर साल हर वर्ष हम उनके साथ प्रयास करते रहने का आपके साथ हैं।
2: इतने प्रख्यात कवि हमारे बीच मौजूद हैं, कोई कविता हम ना आपसे सुने, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: जी, मैं एक छंद और एक छोटी सी एक कविता के एक अंश में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, इस दिन के लिए, समय के लिए, जब हम नेताजी को याद करते हैं। एक्चुअली हम डॉक्टर हरिओम पवार जी के साथ रहते हैं, और डॉक्टर हरिओम पवार जी और डॉक्टर अतुल कृष्ण दो एक बिल्कुल दो जिस्म एक जान होते हैं। वो उनका कोई भी कार्यक्रम हो, अगर डॉक्टर अतुल जी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और वो भी नेताजी पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो डॉक्टर हरिओम पवार जी ना हो उसमें, ऐसा कभी संभव हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ, मैं कुछ पंक्तियाँ, चार पंक्तियाँ उनके नाम देना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, जो मैं लिखने का प्रयास किया है। सैकड़ों बरस अपमान का जो विष पिया, लगती थी नियति भी अपनी गुलाम जी, और शहर शहर कत्लगाह, सारा देश था तबाह, जिंदा लाश रह गया था आदमी का नाम जी। आजादी के लिए मशाल जब निकला वो लाल, आजादी के लिए मशाल जब निकला वो लाल, देश के ना अंग्रेज भी उसे विराम जी, और देश के लिए जिया वो, देश के लिए गया वो, देश के लिए जिया वो, देश के लिए गया वो, कोटि कोटि ऐसे देश भक्त को प्रणाम जी, देश के लिए जिया वो। और एक कविता, काफी बड़ी कविता, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो प्रयास किए, उस आंदोलन में सब लोगों की भागीदारी रहे, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत देर देर रात तक अपने अलग से भाषण दिए बंगाल में, ऐसे मुझे लिखा पढ़ा है, मैंने कहीं सुना है, पढ़ा भी है, कि वो कहीं जैसे गोभियां कहीं खेत में उग रही होती थी, तो वहां खड़े होकर वो भाषण देते थे रात रात भर। उन्हें समझते जैसे नर मुंड है, सिर है लोगों के, और मैं भाषण दे रहा हूँ, उसी तरह उन्होंने देश को, पूरे देश को फिर दिन भर में, रात भर में जगाया। मैं कुछ पंक्तियां वहां से पढ़ना चाहता हूँ। एक जिद थी उन्हें कि हर आदमी इस आंदोलन से जुड़े, कि सदियों की घोर गुलामी से परेशान था, गोरों की कपट नीति से बड़ा हैरान था, सदियों की घोर गुलामी से परेशान था, गोरों की कपट नीति से बड़ा हैरान था, पर अधीनता से मुक्ति तेरा अरमान था, और तुझे जिद से जगाना हिंदुस्तान था, और तुझे जिद से जगाना हिंदुस्तान था, दिल्ली चलो बोल कर जाने कहाँ खो गया, देश के लिए सुभाष तू तो वरदान था, दिल्ली तेरा रास्ता निहारती रही, तेरी भारत माँ तुझे पुकारती रही। दिल्ली तेरा रास्ता निहारती रही, तेरी भारत माँ तुझे पुकारती रही। और एक पंक्तियां सुनना कुछ दे रहा हूँ। स्वर से फिजाओं में भी प्राण फूंक देता था, वादियों में नित नई जान फूंक देता था। तन मन धन अर्पण सब मातृभू के वास्ते, न्याय के उसने बनाए थे अलग रास्ते। त्रस्त बेबसों में जब झलकती थी दीनता, यक्ष प्रश्न ओढ़ के खड़ी थी पराधीनता। वीणा के स्वरों में जब व्याकुलता पलती, रचे नया इतिहास लेखनी मचलती। चरवेती वाला सत्य जानकर, न्याय व समानता सभी को मिले ठान कर। तुमने कहा दुखों से मुक्ति मैं दिलाऊंगा, तुम मुझे खून दो मैं आजादी लाऊंगा। किंतु देश भोग रहा कौन सा संतराष है, कौन सी आजादी है न जिसमें सुभाष है, कौन सी आजादी है न जिसमें सुभाष है। दिल्ली चलो बोल कर, जाने कहाँ खो गया, देश के लिए सुभाष तू तो वरदान था। दिल्ली तेरा रास्ता निहारती रही, तेरी भारत माँ तुझे पुकारती रही। दिल्ली तेरा रास्ता निहारती रही, तेरी भारत माँ तुझे पुकारती रही।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा आजाद हिंद रेडियो भी नेताजी को ही समर्पित है और देशभक्ति से संबंधित हम कार्यक्रम करते हैं। हमारी भी एक टैगलाइन है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: आज मैं जैसे पहले बताया है कि आज केवल देश में ही नहीं, दुनिया भर में जितना नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उनके जीवन काल में उस समय तक था जब तक लोगों ने उन्हें देखा, उससे भी कहीं ज्यादा उनका नाम बढ़ा है। उनके कार्यों को याद किया जाता है और उनके बहुत सम्मान के साथ उन्हें याद किया जाता है। मुझे खुशी है कि हम उस देश में पैदा हुए, हम उस देश के वासी हैं जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरीखे एक इतने बड़े क्रांतिकारी ने जन्म लिया जो पूरी दुनिया पर अपने कार्यों के लिए छा गया। मैं प्रणाम करता हूँ उन्हें और आपके इस मिशन को प्रणाम करता हूँ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है, इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। आगामी 21 अक्टूबर को हम मनाने जा रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस और इसे आयोजित किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और हमारे आदरणीय फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की ओर से। अभी अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्याम मोहन गुप्ता जी। आप पवार वाणी फाउंडेशन के ट्रस्टी और ट्रेजरर हैं और उत्तर प्रदेश उपभोक्ता समिति के डायरेक्टर भी हैं, राज्यपाल द्वारा नामित। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका।
1: सुभारती यूनिवर्सिटी और सुभारती यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे इस मेरठ शहर के लिए एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं कि वो सालों साल तक याद रखी जाएगी। मैं इस अवसर पर फिर दो सुभाष जी के छोटे छोटे संस्मरण बताना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े IAS थे, विश्वास पाटिल जी। ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये संस्मरण, वो किताब इतनी महानायक के नाम से आई है, तो उसके दो छोटे छोटे संस्मरण है। पहला तो ये है कि जब 1945 के अंदर आजाद हिंद फौज के ऊपर लाल किले के प्राचीर से केस चला, तो उस समय सहगल, शाहनवाज और ढिल्लो पे केस चला, तो पूरे देश को ये पता चला कि सुभाष क्या थे और क्या नहीं। उस समय का मुझे एक संस्मरण याद आता है, किताबों के द्वारा मैंने पढ़ा है कि उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर महाराणा प्रताप और शिवाजी के नाम पे महिलाएं अपने बच्चों का नाम रखती थी, लेकिन जब पूरे देश को उस लाल किले की प्राचीर से पता चला तो महिलाओं ने अपने नवजात शिशु का नाम सुभाष चंद्र बोस भी रखना शुरू कर दिया। घरों के अंदर भगवान कृष्ण, राम और कुछ क्रांतिकारियों के फोटो हुआ करते थे, अब बराबर के अंदर सुभाष चंद्र बोस का भी फोटो लगने लगा। हम उन सुभाष चंद्र बोस पे बहुत गर्व करते हैं। उस समय 1945 उस समय जिस समय गांधी का अहिंसा का गरुड़ पूरी दुनिया के अंदर माना जाता था, उस समय सुभाष ने हिंसात्मक तरीके से अपने 43,000 युवा, जिसके अंदर से 40,000 युवा थे और 3,000 महिलाएं थी, एक सेना बना के, एक कविता थी ये कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी महानायक के अंदर ये 28 लाइन की कविता है, तो उसकी पहली पंक्ति थी तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और देश की 43,000 माओं ने और पिताओं ने अपने बच्चों को देश के लिए दे दिया। दूसरी घटना ये है कि उस समय सबसे बड़ी हमारे देश की परेशानी थी कि जिन्ना का आंदोलन चरम उत्कर्ष के ऊपर था। जब जिन्ना का आंदोलन था तो जिन्ना ने हिंदुस्तान के उस समय के सबसे बड़े नेता हो, चाहे वो पटेल हो, गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जाकिर हुसैन हो, सबके पास गए और ये कहा कि हम अलग पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। तो सबने एक ही स्वर के अंदर ये कहा कि भाई हम सब कुछ नहीं है, अगर आपको इसका निर्णय लेना है तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी से हाँ करवानी पड़ेगी। पता चला उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ऑस्ट्रिया के अंदर थे, वहाँ जाके वो सिद्धई जी गए, जिन्ना के PS हुआ करते थे और जिन्ना के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वहाँ जाके उन्होंने बहुत कोशिश की सुभाष नेताजी से मिलने की, लेकिन वो नहीं मिल पाए। 4-5 दिन बाद उनकी पत्नी एमिली, आप सब जानते हो नेताजी की, उसके द्वारा वो उनसे मिले। मिलने के बाद उन्होंने एक ही शर्त रखी कि नेताजी, हमारे हिंदुस्तान के सारे नेता इस बात पे सहमत है कि पाकिस्तान अलग कर दिया जाए, लेकिन सबने एक ही बात कही कि आप नेताजी अगर इस पे हाँ भरेंगे तो ये कुछ पॉसिबल हो सकता है। नेताजी ने जो उस महानायक किताब के अंदर लिखा है, नेताजी ने अपने रिवॉल्वर निकाली और रख दी और ये कहा, हिंदुस्तान के नेताओं को कह देना कि अगर किसी ने भी मेरे भारत को खंडित करने की कोशिश की तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी नेता को नहीं छोड़ूंगा, और ये कहा प्रेस में भी ये बात कह देना, ये इस तरह का नेता, नेताजी हम कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से उन्होंने देश को आजाद करवाया। और आज सुभारती यूनिवर्सिटी के द्वारा, डॉक्टर अतुल जी के द्वारा, जो उनके पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक जो देशभक्ति है, और हमारे आदरणीय पवार जी बैठे हैं, सुमदेश जी बैठे हैं, सबको नमन करते हुए, डॉक्टर RP सिंह जी भी है, बस इतने ही कहके अपनी बात को।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप सभी यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती। अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं।

अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नई उम्मीद 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। आगामी 21 अक्टूबर को हम बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे

0: रही है अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस और इसे आयोजित किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और हमारे आदरणीय फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के सौजन्य से। आज अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए और अपनी कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर हरिओम पवार जी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: आभार आपका मुझे ये अवसर देने के लिए। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, हर्षित हूँ कि मुझे आज दूसरी बार आपके इस माध्यम से बात करने का अवसर मिला है। आज फिर पुनः एक ऐसा पावन अवसर है हमारे डॉक्टर अतुल कृष्ण सुभारती के संस्थापक, सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं, जैसा अभी पूर्ववर्ती श्री श्याम मोहन जी ने कहा, देश प्रेम, राष्ट्र जागरण, राष्ट्र वंदना, राष्ट्र प्रथम, और लगभग पूरे तन मन धन से देश के लिए समर्पण की भावना लिए हुए, और विशेष रूप से नेताजी के प्रति तो उनका समर्पण ऐसा है जिस पर टिप्पणी करना भी संभव नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति उनकी निष्ठा, उन्हीं की नहीं, हम सबकी निष्ठा, हम सबकी श्रद्धा, हम सबका लगाव, कुछ हो ना हो कम से कम वो व्यक्तित्व एक प्रेरणा है हिंदुस्तान की आने वाली समस्त पीढ़ी के लिए कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति आस्था, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति प्यार, राष्ट्र के जागरण के प्रति लगाव। अगर कहीं सीखना है, किसी को सीखना है, उसका कोई महाविश्वविद्यालय है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अब डॉक्टर अतुल कृष्ण जो 21 अक्टूबर को अखंड भारत के नाम पर, अखंड भारत के संदर्भ में, अखंड भारत के नेताजी के सपने के लिए जो मेरठ में समारोह कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि वो एक बिल्कुल एक अविस्मरणीय हो, जैसा कभी पहले कभी हुआ नहीं हो। मैं नहीं जानता इससे हमारे नेताजी भी नहीं आ जाएंगे, इससे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी नहीं आ जाएगा, लेकिन एक भावना जगेगी आने वाली पीढ़ी में, नई पीढ़ी में, समाज में, समाज के लोगों में कि कौन थे वो, उनके प्रति सोचो तो, उनका समर्पण देखो तो, उनके त्याग के बारे में विचारो तो, उस आदमी के प्रति अगर जरा भी सोचोगे तो तुम्हारे भीतर की, अंदर की, आत्मा की कुछ कुछ कुछ लहरें राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ेंगी, राष्ट्र प्रेम के बारे में सोचेंगी, राष्ट्र प्रेम के बारे में आप में उत्प्रेरणा जारी होगी। इसलिए और कोई उद्देश्य पूरा हो ना हो, ऐसे किसी कार्यक्रम से मैं बधाई देता हूं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को कि वो कम से कम समाज के हर वर्ग में, समाज की हर वर्ग की, हर आयु वर्ग की पीढ़ी में वो एक ज्योति जलाना चाहते हैं, वो एक याद जगाना चाहते हैं, वो एक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को संबल देना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं सब कि प्रथम तो राष्ट्र ही है, राष्ट्र से पहले तो कुछ है नहीं। और नेताजी ने जो किया, नेताजी जो कर गए, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, नहीं जाती नेताजी की मृत्यु कैसे हुई या नेताजी जीवित हैं या जीवित नहीं है, ये बहस अब कालातीत हो गई है, लेकिन नेताजी का नाम है, रहेगा, आजीवन रहेगा, कम से कम जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक नेताजी का नाम भी रहेगा। हिंदुस्तान अमर है तो नेताजी का नाम भी अमर है। उस जैसा व्यक्तित्व जो आदमी इंग्लैंड में जाकर के IAS ICS बनने के बाद उसको छोड़ दे, और बने केवल इसलिए कि पिताजी ने ताना दे दिया था कि ये मुश्किल काम है, पहले उन्होंने मुश्किल काम करके दिखाया, उसको छोड़ के आए, कितना बड़ा त्याग का प्रचंड तूफान उनके भीतर होगा, राष्ट्र के प्रति कितनी बड़ी क्रांतिकारी ज्वाला उनके भीतर जल रही होगी। देश में अगर भारत के नेताओं से उनका सामंजस्य नहीं बैठा, उनसे उनके वैचारिक मतभेद हुए, तो उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, उन क्रांतिकारियों के खिलाफ वो खड़े नहीं हुए, भारत के राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जो राजनीति के लिए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने कोई युद्ध नहीं खड़ा किया, चुपचाप चले गए और दुनिया में भारत की धरती से बाहर जाकर के अपनी ताकत के बल पर, कौशल के बल पर, बुद्धि के बल पर एक फौज खड़ी कर दी। और सच ये है कि अंग्रेज उस फौज से डरा। भारत की आजादी का मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा श्रेय किसको है, तो भारत की आजादी का सबसे बड़ा श्रेय 75% केवल और केवल नेताजी और नेताजी की बनाई हुई आजाद हिंद फौज को है। बाकी 25% में हमारे वो सब नेता क्रांतिकारी वो सब आते हैं जिनके बलिदानों से हम उनके बलिदानों के प्रति भी समर्पित हैं, उनके बलिदानों के प्रति भी अपना सर झुकाते हैं। लेकिन इस सत्य को स्वीकारने से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि अंग्रेज क्रांतिकारियों के कारण डर के नहीं भागे, क्योंकि क्रांति की अंतिम घटना 1931 में समाप्त हो गई थी। 1931 के बाद 1947 तक एक भी क्रांतिकारी कोई घटना घटी नहीं, किसी किसी क्रांतिकारी ने बम फोड़ा नहीं, किसी पर गोली चलाई नहीं। तो अंग्रेज 16 साल बाद डर गए हों कि क्रांतिकारियों की आत्मा द्वारा से आके आंदोलन ना कर दे, इसलिए आजादी दे के भाग गए हों, ऐसा नहीं है। अंग्रेज भागे कि नेताजी ने एक जज्बा पैदा कर दिया है, नेताजी फौज बना सकते हैं। अगर नेताजी की इस भावना के बल पर हिंदुस्तान के और लोगों की भावना भी जागृत होंगी तो आपको भागना ही पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों के भागने के पीछे सबसे बड़ा भाव नेताजी की फौज का था, ऐसा मैं स्वीकारता हूँ। उनको याद करना पुण्य है, उनको याद करना पूजा है, उनको याद करना एक ऐसी सांस्कृतिक गतिविधि है जो हमारी सांस्कृतिक चेतना को बल देगी, हमारी सांस्कृतिक चेतना को मशाल देगी। वो मशाल थे, ज्योति स्तंभ थे, प्रकाश स्तंभ थे, उन्हीं की प्रकाश की किरणें आज भी हैं और वो आगे भी मिलती रहेंगी। मैं अतुल जी के इस प्रयास को पुनः एक बार सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि वो 21 अक्टूबर को नेताजी के सपने को, नेताजी के अखंड भारत के देखे हुए सपने की याद को, उस याद के माध्यम से जनता में राष्ट्र प्रेम के प्रति भावनाएं जगाने के लिए जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें हम सबको भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अतुल एक राष्ट्रभक्ति की जलती हुई ऐसी लौ है जिसके भीतर बढ़ने वाला तेल कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर उस मसाल में उनके साथ हाथ लगा देने चाहिए जो वो मसाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि 21 अक्टूबर को हम इस दिन को यादगार दिन बनाएंगे, देश के प्रति समर्पण के नाम पर, देश के प्रति श्रद्धा के नाम पर, देश के प्रति प्यार के नाम पर, देश के प्रति लगाव के नाम पर।
2: क्या बात है। जिस प्रकार ना एक छात्र जीवन में छात्र को खुशी होती है जब वो परीक्षा देता है, उसका परिणाम आता है और वो सफल हो जाता है, उसमें उस तरीके की ही खुशी आज मुझे हो रही है। क्योंकि अभी तक मैं टीवी पर देखता था, स्टेज पर सुना है और आज समक्ष बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, पास में बैठे हैं और बातें चल रही हैं। और ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा मेरे उन श्रोताओं के लिए जो रोजाना मुझे सुनते हैं और इतने बड़े अतिथि आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे ये विनम्र निवेदन न करूं कि सर हमारे श्रोताओं के लिए
1: नहीं, पंकज जी मैं श्री आरपी सिंह जी जब भी बुलाते हैं और मैं कविता नहीं सुनाऊं तो मुझे भी लगेगा कि मेरे साथ भी अन्याय ही हो गया। मैं एक व्यावसायिक कवि हूं लेकिन सुभारती मेरा घर है, सुभारती मेरा परिवार है। मैं जब भी सुभारती परिवार में आता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार में आया हूं। आरपी सिंह साहब ने मुझे जब जब भी बुलाया, जब भी वो बाहर भी कहीं चले गए तो वहां भी बुलाया, यहाँ भी जब बुलाया तो मैं, मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई। ऐसा लगा मेरे अपने घर में भी मुझे थोड़ा सा प्यार मिल रहा है। और मैं लगभग कविताएं सुना के ही गया, बिना सुनाए मैं गया नहीं कभी। सुमनेश जी ने आज बहुत अच्छी कविता जो मैंने पहले नहीं सुनी थी और बहुत आज के दिन की कविता, 31 अक्टूबर को इस कविता को दोहराया जाना चाहिए, इस कविता की बारंबार आवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक श्रेष्ठ भावों का जो प्रदर्शन हो सकता है वो सुमनेश जी ने अपनी कविता में किया। अच्छा, मैंने भी एक कविता लिखी थी, देश को पटेल या सुभाष चाहिए, लेकिन वो बहुत पुरानी कविता है मेरी, मुझे आज याद नहीं। तो मैं ऐसी दूसरे संदर्भ की राष्ट्र प्रेम से लिपित एक कविता सुना देता हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कम लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुपाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। दहशत गर्दो अपने दहशत गर्दो अपने घर में चाहे खेलो खेलो कूदो खेल करो, दहशत गर्दो अपने घर में चाहे जो भी खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान नेताजी होते तब भी उनकी भावनाएं देश के प्रति समर्पित थी। मैं आज भी देश के प्रति किसी भी देश से प्यार करने वाले के दिल में जो होता है वही गाने की कोशिश करता हूँ। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी को, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। नेताजी के समय भी गरम दल और नरम दल की यही बहस थी कि हम हथियार उठा करके लड़ाई लड़ें या हम गांधी जी के चरखे के हिसाब से अहिंसक लड़ाई लड़ें। उस पर भी ये मेरा विचार है, उस समय के द्वंद्व पर नेताजी के प्रति अपनी निष्ठा और अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ आज भी, और आज भी मेरी वही भावना है जो शायद नेताजी की उस समय नरम दल गरम दल के विवाद के बीच रही होंगी। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती, जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, नेताजी ने तभी छोड़ दिया था। मैं आज कह रहा हूं आज के संदर्भ में भी गांधी जी पूरा संपूर्ण गांधी बनने से लाभ नहीं, मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं गांधी जी की पूजा करता हूं, गांधी जी का समर्थक हूं, लेकिन आज के संदर्भ में गांधी जी के कुछ वो महान विचार महान सद्भावना के विचार अप्रासंगिक हो गए हैं जब हम टेररिस्टों से घिर गए हैं, जब बंदूकों की गोली फैसले करने लगी है, आतंकवादी छा गए हैं, तब गांधी की वो विचारधारा जो समझौतावादी थी जो सब सहने वाली थी उससे काम नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने लिखा है भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, नई सदी का भारत है ये 62 वाला, हम उनके देश को समर्पित करते हैं कुछ पंक्तियां, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, सोई रावल पिंडी जब खामोश दिखाई देती है उसको सपनों में भी ब्रह्मोस दिखाई देती है, उसको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन करूंगा सुभारती के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण की जो ये पूजा जैसा एक मुहिम है, पूजा जैसा एक ये कार्यक्रम है, पूजा जैसा एक ये अभियान है। इस अभियान में हम सब मेरठ के लोग सब मिलकर शामिल हों और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM से मैं ये संदेश देना चाहूंगा अपनी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, प्रोफेसर्स को, वकीलों को, समाज के सभी वर्गों को कि याद करो नेताजी को इसलिए कि आप देश को याद कर सको, याद करो नेताजी को इसलिए कि आप देश से प्यार कर सको, याद करो नेताजी को इसलिए कि देश के प्रति आपके निष्ठा, आपका लगाव, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा बनी रहे, जागृत रहे। देश तब रहेगा जब आप देश के साथ रहेंगे, देश तब रहेगा

0: जब आप देश को बहुत बहुत लगाव से अपने दिल का हिस्सा मानेंगे। उसी प्रक्रिया के लिए नेताजी को याद कीजिए। 21 अक्टूबर को अखंड भारत के सपने के साथ डॉक्टर अतुल के इस सपने को साकार कीजिए, जो वो लोगों में चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जगे लोगों में चेतना, जगे प्यार की लहरें, जगे प्यार का विश्वास, जगे देश के प्रति निष्ठा, जगे यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।
1: उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं 21 अक्टूबर के लिए, जब हम मनाने जा रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस। एक भव्य रैली होने जा रही है हमारे क्रांति धरा मेरठ में और आप सभी ज्यादा से ज्यादा वहां पर जुड़िए और आइए एक साथ मिलकर अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि जल्द ही मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, किसी नए अतिथि के साथ, और यहीं पर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो पर। तब तक आप बस यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और जी त्योहारों का सीजन हो और डांडिया की झंकार ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सही कहा ना मैंने। तो आपके इस जश्न को दोगुना करने आ रहा है हिंदुस्तान का उत्सव डांडिया नाइट्स। जी हाँ, 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे से साकेत स्पोर्ट्स क्लब मेरठ बनने वाला है शहर का सबसे हैपनिंग पॉइंट। और सबसे कमाल की बात, लाइव परफॉर्म करने आ रही हैं बॉलीवुड सिंगर अनीता भट्ट। तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस निकाल लो, डांडिया स्टिक्स रेडी कर लो और अपने गैंग के साथ पहुंच जाओ साकेत स्पोर्ट्स क्लब मेरठ में ठीक शाम 7 बजे। बाकी पास और टिकट्स के लिए आप livehindustan.com पर जा सकते हैं। मैं बाकी इस इवेंट में आपसे मिलने वाला हूं। आपसे यही कहूंगा दोबारा से कि मिस मत करना। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: शहर आपका है, घर भी आपका है। कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सुनसान सड़क, अकेलापन और एक अजनबी जो मदद मांग रहा है। आपका दिल पिघल जाता है। आप मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये एक जाल हो सकता है। आजकल सुनसान रास्तों पर लूटपाट और अपराध के लिए अजनबी मदद का नाटक करते हैं। इंसानियत जरूरी है, पर आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। सुनसान जगह पर गाड़ी कभी ना रोकें, अपने शीशे और दरवाजे बंद रखें। अगर कोई मुसीबत में लगे तो सीधे पुलिस को फोन करें। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: उंगली पर लगने वाली स्याही सिर्फ निशानी नहीं आपकी ताकत है। शिकायत करने से अच्छा है सही चुनाव करें। हर वोट कीमती है, इसीलिए अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं और वोट करने का मौका मिलने पर जरूर वोट करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।